एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण

0: विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक से 3.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जिस वस्तु के नाश से बड़ा दुख या कष्ट होता है, उसके प्राप्त होने से पूर्व सुख या दुख कुछ भी नहीं होता है। अतएव उसकी प्राप्ति के पूर्व की अवस्था को ध्यान में रखकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रभु की आराधना से दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जिसे देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु की पूजा अर्चना करने से जीव को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है।

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता।

प्रभु किसी की झोली खाली नहीं रखते। उनके दरबार में छोटे बड़े हर जाति हर पंथ के लोग एक हो जाते हैं। वही हमारे और हम सबके मालिक हैं।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुनिएगा

कार्यक्रम सुबह सुहानी हिम गुंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। सुबह 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हिमाचली लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे 11:05 पर और जय हिंद गीत माला आप सुनेंगे 11:30 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। फिल्मों से भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। 5:25 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा मंच। आज सुनिए हेलो जीनियस। शाम 6:05 पर सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मौजा गराई दिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। आज बातचीत का विषय रहेगा सांसद आदर्श ग्राम योजना। किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 7:10 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनिएगा रात 8:00। देश गान आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। हिम दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा रात 9:15 पर। 9:30 पर संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:50 पर सुबह 11:00 दोपहर 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। पश्चिमबंगालस्य नन्दीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मतव्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टन चावड़ी आसने

0: AINRC दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचंडं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन, तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिंतनात् पूर्व नियम निषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यंतं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शांति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानां अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-उत्तरैकशत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केंद्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियंत्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावना वर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवंत केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है जो हमारे

0: लेट डाउन गाइडलाइंस हैं कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का 3रा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centres to be developed as centres of community participation. He said families living near Anganwadi centres should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys, and other locally relevant items for children. The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी श्रोताओं का तहे दिल से मैं संगीता स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम है सुबह सुहानी। आप हमारा ये कार्यक्रम FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं, तो उन सभी श्रोताओं का भी हम हार्दिक

अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आती हैं तो वो सिर्फ नया दिन ही नहीं लाती बल्कि एक नया मौका भी लाती है। तो खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का है ये दिन, तो इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। निकोलस लेमन ने कहा था कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगातार कुछ न कुछ हासिल करना ही नहीं होता है, कभी कभी उसे बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसमें कुछ जोड़ना नहीं बल्कि कुछ अनावश्यक चीज़ों को निकाल देना होता है। यानी खुद को तराशने में ही जिंदगी की समझदारी है। जी हाँ, ये बात दिल को बड़ी गहराई के साथ छूती है कि खुद को तराशने की ही जिंदगी की असली समझदारी है। अक्सर हम दूसरों की कमियां ढूंढने में, उन्हें बदलने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, पर जरा सोचिए अगर वही वक्त वही कोशिश हम खुद को थोड़ा निखारने में, अपनी खुशियों को सुधारने में लगाएं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए इसे नए दिन की शुरुआत करते हैं खुद से एक छोटा सा वादा करके कि आज हम कल वाले आप से थोड़ा और बेहतर बनेंगे। जी हाँ, FM धर्मशाला पर सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो चलिए अब आपके चेहरे पर लाते हैं मुस्कान और इस बेहद प्यारे नगमे के साथ जो बेहद सुरीला है, ताजगी भरा है और आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह सुहानी प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं 10 अक्टूबर के दिन की खास और महत्वपूर्ण घटनाओं पर जिनके कारण आज का दिन बना खास और विशेष। 1910 में 10 अक्टूबर के दिन वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साल 1991 में भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब अपने नाम किया था। 1992 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बने विद्यासागर सेतु को यातायात के लिए आधिकारिक तौर पर खोला गया था। 2011 में आज ही के दिन भारत के जाने माने लोकप्रिय गजल गायक जगजीत सिंह का निधन हुआ था। भारत के हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1924 में हुआ था। और श्रोताओं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी फिजिकल फिटनेस, करियर, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया प्रोफाइल का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन

0: दिमाग का क्या जो 24/7 बिना रुके काम कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अलमारी में बंद करके रखा जाए या फिर जिस पर बात करने में झिझक महसूस हो। जैसे सर्दी जुखाम होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर मन परेशान हो, उदासी घेर ले या एंग्जाइटी हो तो डॉक्टर से बात करना और मदद लेना बिल्कुल नॉर्मल बात है। याद रखिए, आपका मन भी उतनी ही देखभाल और प्यार का हकदार है जितना आपका शरीर। इसलिए मुस्कुराइए, खुद पर थोड़ा दयालु बनिए और अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। और इसी मौके पर डॉक्टर मेघा की बातें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं, सुनिए ये बातचीत।
1: विश्व मानसिक दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पिछले 30 सालों से हम हर साल 10 अक्टूबर को मनाते हैं ताकि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी हो और वो सही समय पर उसका इलाज ले सके। मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारे दिमाग, इमोशन और सोशल वेलबींग की ओवरऑल स्टेट। जैसे सबकी फिजिकल हेल्थ होती है वैसे ही सबकी मेंटल हेल्थ भी होती है। ये इस बारे में है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तब आप आम तौर पर लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, काम और पढ़ाई में प्रोडक्टिव रहते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं, हेल्दी रिलेशंस बना पाते हैं और उन्हें निभा पाते हैं। और मुश्किल वक्त या प्रॉब्लम्स के बाद जल्दी ही आप वापिस से नॉर्मल स्टेट में भी वापिस आ पाते हैं, यानी कि बाउंस बैक कर पाते हैं, आप रेजिलिएंट होते हैं। ठीक उसी तरीके से साइकेट्रिक इलनेस, ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी इंसान के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने के तरीके को काफ़ी हद तक बदल देती है। जैसे अस्थमा एक फिजिकल इलनेस है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, वैसे ही साइकेट्रिक इलनेस दिमाग को अफेक्ट करती है। ये सिर्फ टेम्परेरी सैडनेस या गुस्सा या मूड स्विंग्स नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो लगातार परेशान करती है और उस इंसान की डेली लाइफ, काम, रिश्तों को मेंटेन करने में जेन्युइनली मुश्किल पैदा करती है। इसके कॉमन एग्जांपल्स आप लोगों ने सुने होंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, एडिक्शन, स्किजोफ्रेनिया, ये सब मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर इतने ज़्यादा मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर हम उनका एग्ज़ाम रख दें तो शायद हर कोई ही टॉप कर जाए। साइकेट्रिक इलनेसेस को हम एक बायोसाइकोसोशल मॉडल से समझ सकते हैं जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में पहले से ही किसी को साइकेट्रिक इलनेस है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो हो सकती हैं। फिर दूसरा हमारा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मानसिक कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे चाइल्डहुड ट्रोमा हो सकता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, ओवरथिंकिंग हो सकती है या अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो बचपन से ही हम डेवलप कर लेते हैं। फिर तीसरा हमारा आता है सोशल फैक्टर्स यानी कि समाज से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जैसे अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं पे एक साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है किसी इंसान को। तो ये कहना सिर्फ कि ये सिर्फ एक मॉरल है या भूत प्रेत की वजह से है या कहें कि स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत। कोई भी बीमारी है, चाहे वो साइकेट्रिक इलनेस है, चाहे वो फिजिकल इलनेस है, वो किसी का भी बैंक बैलेंस देखकर या वो गांव से है, शहर से है, ये देखकर नहीं होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्लास, बैकग्राउंड, किसी को भी साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके लिए हम फंक्शनल डिक्लाइन को बहुत क्लोजली असेस करते हैं। पहला चीज़ आ जाता है नींद और भूख में बदलाव, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम। मूड में अचानक से बदलाव आना जो कि सिर्फ डेली लाइफ के मूड स्विंग्स या सैडनेस से काफ़ी बढ़ के होता है, जैसे बिना किसी ठोस वजह के बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, लगातार चिड़चिड़ापन रहना और काफ़ी हफ्तों तक उदासी, रोने का मन करना। फिर आ जाता है सोचने और समझने में परेशानी होना, यानी कि एक जगह पे फोकस ना कर पाना, चीज़ें भूल जाना, छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना। फिर एक पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होना, यानी जिन चीज़ों में, हॉबीज़ में, काम में पहले बहुत मज़ा आता था, मन लगता था, खुशी मिलती थी, अचानक से उनमें दिल ना लगना, ऐसा

लगना कि किसी भी चीज का कोई फायदा ही नहीं है। फिर आता है अजीब या असामान्य बातें, अनयूजुअल बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी बिना किसी प्रूफ के ही दूसरों पे शक करना, और ऐसा लगना कि अकेले में बात कर रहा है कोई इंसान, है ना, आसपास कोई नहीं है, बट ऐसा लगना कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई दिखाई दे रहा है, जिसको हम हेलुसिनेशंस भी बोलते हैं। और फिर आ जाता है हमारा नशा करना। शायद हो सकता है पहले वो इंसान नशा नहीं करता था, या फिर कुछ समस्याएं आई कि जिससे उसका नशा करने का जो पैटर्न है काफ़ी बढ़ गया। फिर एक चीज़ आप महसूस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना वजह के, फिजिकल पेन, यानी कि सोमेटिक सिम्टम्स, बॉडी में लगातार दर्द रहना, सेंसेशंस होना, पेट खराब रहना, जबकि किसी भी फिजिकल टेस्ट में या मेडिकल रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आएगा, बट वो इंसान को फिर भी कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स रहते ही रहते हैं। और इन्हीं सभी की वजह से जब डेली रूटीन के काम में मुश्किल आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, इम्पेयर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है और उनको एक इलाज की, एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। बुखार होता है या कुछ डायबिटीज़ होता है या कोई फिजिकल हेल्थ होती है, तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, 10 डॉक्टर से सलाह लेते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, बट जब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की, तो अक्सर पहला विचार यही आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आगे की ज़िंदगी का क्या होगा। और इसी डर की वजह से या मिसकंसेप्शंस की वजह से वो लोग बहुत देर कर देते हैं एक प्रोफेशनल हेल्प को सीक करने में, एक साइकेट्रिस्ट को मिलने के लिए। देखिए, साइकेट्रिक इलनेस सिर्फ दिमाग पर ही असर नहीं करती है, ये इंसान की फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। इसीलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी कि अलग अलग प्रोफेशनल्स की टीम बनाई जाती है, ताकि इंसान का हर तरीके से इलाज हो सके। इसको हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। इस टीम में सबसे पहले होते हैं साइकेट्रिस्ट, यानी कि वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि इलनेस को समझते हैं, डायग्नोस करते हैं और आपकी मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि वो पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, उसके लिए थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। फिर एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर का रोल होता है टीम में, क्योंकि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, तो परिवार का भी ये जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रॉब्लम के साथ, इस इलनेस के साथ कैसे मैनेज करना है। और पेशेंट का ध्यान रखते रखते परिवार भी एक लेवल पर आकर काफ़ी डिस्ट्रेस महसूस करता है, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनके मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर फैमिली के साथ काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि पेशेंट का परिवार और समाज में एक रोल, भागीदारी बेहतर हो। फिर हमारे आते हैं साइकेट्रिक नर्स, यानी कि अगर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ये उनकी केयर करते हैं, दवाइयों का ध्यान रखते हैं और पेशेंट के बिहेवियर में आने वाले चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर बीमारी की वजह से पेशेंट डेली लाइफ के काम या जॉब स्किल भूल गया है, तो ये एक्सपर्ट उन्हें सेल्फ केयर, टाइम मैनेजमेंट और कामकाज, यानी वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो मैक्सिमम लेवल पर इंडिपेंडेंट और एक डिग्निफाइड लाइफ समाज में जी सके। देखिए, मेंटल इलनेस में रिकवरी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, जैसे सर्दी जुकाम में होता है, राइट? इसका मतलब अक्सर ये होता है कि इंसान उस कंडीशन को मैनेज करना सीख जाता है, ताकि बीमारी उसकी लाइफ, जॉब और रिश्तों पर हावी ना हो। जैसे लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या अस्थमा को दवाई से कंट्रोल करके एक पूरी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, है ना, साइकेट्रिक इलनेस में भी ठीक वैसा ही होता है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या दवाइयाँ सच में काम करती हैं, तो हाँ, बिल्कुल काम करती हैं, लेकिन उतनी ही ज़रूरी हमारी थेरेपीज़ भी हैं, जो कि एक पेशेंट और परिवार को उस बीमारी के साथ बेहतर ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। आप एक सपोर्टिव, नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, बजाय कि आप एडवाइस देने के, फिक्स करने के, ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता तुम कैसा फील कर रहे हो, पर मैं सुनने को तैयार हूँ।

0: या मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी दिन से ठीक नहीं लग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। या ये कहना कि आओ हम मिलकर किसी डॉक्टर की हेल्प ले लेते हैं, राइट? तो इतना ही कहना, सिर्फ सुनना और एक हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना एज अ केयर गिवर, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, वही उस पर्सन के लिए काफी है और उसकी जिंदगी को बचा सकता है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिए कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ।
1: श्रोताओं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर मेघा की बताई हुई इन बातों को गांठ बांध लें और कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत जो बहुत ही मधुर है और आपके मन को शांति प्रदान करेगा।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
6: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है और ये दिन 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस का ही एक विस्तार है। और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव जो है वो 10 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के समय में रखी गई थी। और आज डाकघर केवल चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने तक सीमित नहीं है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बचत योजनाएं, बीमा और डिजिटल वित्तीय सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। बशीर बद्र का लिखा एक बेहद खूबसूरत और मशहूर शेर है जो खत और डाकिये के जज्बातों को बयां करता है। जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे हमने, लिखा कुछ भी नहीं। एक और शेर है, लिफाफा देखकर मालूम कर लेता है डाकिया कि खत में प्यार का पैगाम है या बेरुखी होगी। सलाम उन डाक कर्मियों को जो हमारा संदेश, अच्छी बुरी खबरें, सांस्कृतिक उपहार और नौकरी का संदेश लेकर आते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में शक्ति फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, 10 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास और विशेष है। और 10 अक्टूबर के दिन को हम याद कर रहे हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के उस महानायक को जिन्होंने हमें मालगुड़ी डेज जैसी एक ऐसी खूबसूरत काल्पनिक दुनिया दी जहां बचपन की बेफिक्री और सादगी बसती थी। जी हां, आज जयंती है आर के नारायण जी की। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था। श्रोताओं, जब इंटरनेट या मोबाइल नहीं हुआ करता था तब आर के नारायण साहब ने अपनी कलम से दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर

0: पर रचा था मालगुड़ी। वहाँ की गलियाँ, सरयू नदी का किनारा और पीपल का पेड़, ऐसा लगता था जैसे ये शहर हमारे ही पड़ोस में बसा हो। कहानी के किरदार स्वामी और उनके दोस्तों के कारनामे और ये धारावाहिक बनकर जब टेलीविज़न पर आया तो हम सब ने देखा। नारायण साहब की खासियत यही थी कि वो बहुत ही साधारण कहानियों से हमारे दिल का सबसे गहरा कोना छू लेते थे। उनकी कहानियों के किरदारों की बात करें तो चाहे वो कोई ज्योतिषी हो, कोई गाइड हो, दुकानदार हो या स्कूल का बच्चा, वो सब हमारे और आपके जैसे एकदम आम लोग थे, क्योंकि उनकी कहानियों में कोई भारी भरकम शब्द बाण नहीं था, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान और हल्की फुल्की नोक झोंक होती थी। श्रोताओं, भले ही उन्होंने अपनी रचनाएं अंग्रेजी में लिखी, लेकिन उनका दिल हमेशा ठेठ हिंदुस्तानी ही रहा। अगर आप भी आर के नारायण साहब की कहानियों की दुनिया में गोता लगाना चाहते हैं तो उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें। स्वामी एवन फ्रेंड्स 1935 में आई थी और मालगुड़ी डेज 1943 में उन्होंने लिखी थी। द गाइड 1958 में उन्होंने लिखी, जिसमें राजू गाइड की कहानी है और जिस पर देवानंद साहब की मशहूर फिल्म गाइड भी बनी थी। इस किताब के लिए आर के नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो श्रोताओं, आज आर के नारायण जी को याद करते हुए फुर्सत मिले तो मालगुड़ी डेज का कोई पन्ना ज़रूर पलटिए या फिर गाइड फिल्म ही देख लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और उसके बाद फिर से हाजिर होंगे। प्रोग्राम है सुबह सुहानी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क, विद्यु टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, भानु रेखा गणेशन का जन्म दिवस भी आज ही के दिन है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ था। इन्हें दुनिया रेखा के नाम से जानती है। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपने बहुआयामी अभिनय, विशिष्ट आवाज़ से अपने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। रेखा जी ने 1970 में सावन भादो फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उनकी यादगार फिल्में हैं उमराव जान, और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म खूबसूरत में अपने चुलबुले अंदाज के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। खून भरी मांग, घर, इजाज़त, मुकद्दर का सिकंदर, उत्सव, आस्था और सिलसिला उनकी यादगार फिल्में हैं। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अपनी अभिनय क्षमता, सदाबहार आकर्षण और भारतीय परिधानों, खासकर कांजीवरम साड़ियों के स्टाइल के कारण रेखा आज भी आइकॉन मानी जाती है।

श्रोताओं, महालया अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, यानी पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है। और ये दिन हिंदू धर्म में पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की निश्चित तिथि ज्ञात न हो, या आप पितृ पक्ष के दौरान किसी दिन श्राद्ध करने से चूक गए हों, तो इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के नाम से तर्पण और पिंड दान किया जा सकता है। और इसी को मणिपुर में तारपोन लोइबा कहा जाता है। मैतेई समुदाय के लोग तर्पण परंपरा को मानते हैं और इस अनुष्ठान को लागवान तारपोन कहा जाता है। और ये दिन पूर्वजों की याद, सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाला एक पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब नजर आज की खबरों पर। फिट कांगड़ा 2026 का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक कांगड़ा घाटी के बाण गंगा घाट पर किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय फिटनेस और सांस्कृतिक उत्सव है और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित होने वाला पहला आयोजन है। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। इस नशा मुक्त युवा महोत्सव का नेतृत्व कांगड़ा की SDM डॉक्टर अंजलि गर्ग कर रही हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने और SIR विवाद

वाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी। सोलंग लांडा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो चुका है, जहां तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने खुद 10,500 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरकर इसका शुभारंभ किया है। हाईकोर्ट का जमीन अधिग्रहण पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के मामलों में प्रभावितों को मुआवजे के साथ साथ अतिरिक्त राशि पर भी ब्याज देय होगा। दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन और संभावित यातायात बाधित होने के कारण रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ साथ नमो भारत रेल सेवा भी आज बंद रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ये थी आज की मुख्य खबरें। सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल के प्रोग्राम में होंगी और जानकारियां, तो सुनते रहिए FM धर्मशाला 103.4 MHz पर।

0: सुबह सुहानी।
1: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है
2: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी
2: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक।
1: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
2: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं,
1: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
2: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिली की जाएगी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास

0: पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
6: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
4: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
7: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन

0: बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5-match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers.

हिमगुंजन कार्यक्रम का पहला लोकगीत हमने आपको सुनवाया, जिसे गाया था महेंद्र राम ने। और लीजिए अब सुनिए अगला लोकगीत, आवाज़ है विजय भंडारी की।

0: किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमगुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। इस रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा कटे होंठ का समाधान और दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन का उपचार। इससे संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुसु से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप इसे सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हिम गुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये लोकगीत सुनिए जिसे गाया है मोनिका शर्मा ने।

0: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
1: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
2: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
1: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हिम गुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नसीम बाला का गाया हुआ ये है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

पति पत्नी की खूबसूरत नोकझों को दर्शाता हुआ ये गीत था, जिसे गाया था राज प्रभाकर ने। माफ कीजिएगा, उस गीत को गाया था नसीम बाला ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
0: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: ये लोकगीत आप सुन रहे थे जिसे गाया था राजेश कुमार ने।
1: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई

0: कुछ नए तराने,
1: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
2: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
0: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
0: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
1: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
6: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
5: जी डॉक्टर साहब,
6: सिर्फ इसे ही नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
7: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
9: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
8: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
9: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
8: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
9: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
8: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
9: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
8: लड़ी हक की लड़ाई,
9: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: हिमगुंजन कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत सुनिए, जिसे गाया है शक्ति चंद और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिम गुंजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:10 होने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा।

0: आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 23वीं कड़ी का पुनः प्रसारण। 9:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25

0: वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
1: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं वो जमीन से हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
0: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
0: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
2: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल खेल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो जल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% यह सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के जो

केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, तो उसको कैसे हम जहाजरानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद उस

0: बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
1: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
0: जी।
1: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
0: जी,
1: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
2: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
3: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिये, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूँ पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था, समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक

0: एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3 साढ़े 3 घंटे में 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है, हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेस वेज के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु मैं उसको सेतु नहीं लेता हूँ, मैं उसको समझता हूँ कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेलवे देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो एक मैं डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना, और उसमें रेल में वंदे भारत से जो चला, वंदे भारत से इतना सारा सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तुम इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में केवल 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 1000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूँ, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इससे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इससे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि

0: यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है। शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितने लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहाँ का संबंध हुआ करते थे। आज वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहाँ पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहाँ के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहाँ पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहाँ धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहाँ पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा है और केवल धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे

0: नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174, मैंने आपने बताया कि 64 से करके 170, 75, 74 से बढ़ करके 160, 70 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
0: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
0: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना है, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी, कैंपागोड़ा, हाँ,
0: मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है, इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना है उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
2: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है, जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
3: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव हैं, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव में ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में, यानी इसी वर्ष, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति, और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
0: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बार से, कि कहीं से कहीं पहुंचना, तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
1: जी।
0: उससे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है, और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहाँ पे या तो समुद्र या वहाँ पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
1: जी।
0: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम

0: से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी। आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में, और उसमें आप परेशान होते थे।
1: जी
0: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया,
1: जी
0: आपकी चीज़ों को आसान कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का, और हमारी उसमें हम ये सब सारा का सारा चीज़ डेवलपमेंट हो रहा था। तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका, समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जा करके आपको घंटों लग जाते थे।
1: जी
0: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहाँ पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं, और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है,
1: जी
0: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया, और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया, और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं। तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से, यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन, आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर।
1: जी
0: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज, और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
2: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
3: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई, और अब स्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं, यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है, और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
2: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है, और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया है। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया, जिसे लॉजिस्टिक

0: का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे कि लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है कि ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:50 होने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का किया आह्वान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि कल से शुरू। राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास रहने वाले परिवारों को विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खिलौने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ कल से शुरू हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता महाकुंभ के दूसरे दिन आज समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से शामिल होंगे। आयोजन के पहले दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने समग्र शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का विकास केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में ज्ञान के साथ संस्कार, संवेदना, नैतिकता, कर्तव्य बोध, भारतीय संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश भी आवश्यक है। इस महाकुंभ के प्रथम दिन का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत रहा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: NIT हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ 6.0 के प्रथम दिवस का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत रहा। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन का प्रथम दिवस का

0: उद्घाटन पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक भारत विकसित भारत विषय पर आयोजित विषय से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटारिया जी ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा सदियों से उसकी पहचान और शक्ति का आधार रही है। भारतीय जीवन दृष्टि में आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं बल्कि मानवता, प्रकृति, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ी हुई है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धुलारा में कल माता मनसा देवी संपर्क सड़क व मनहुता में सियूण खड्ड संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 1,66,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पठानिया ने इस अवसर पर डुंगरेड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। आज राष्ट्रीय डाक दिवस है जिसका मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस का विस्तार है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य पर भारतीय डाक विभाग द्वारा ऊना जिला में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अधीक्षक डाकघर ऊना मंडल बलबीर चंद ने बताया कि 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है और बदलते समय के साथ भारतीय डाक विभाग ने अपनी पारंपरिक सेवाओं के अलावा स्पीड पोस्ट, पार्सल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय डाक, डाक जीवन बीमा, बचत बैंक, आधार व पासपोर्ट सेवाएं तथा डिजिटल भुगतान जैसी कई आधुनिक सेवाएं शुरू की हैं। डाक सप्ताह के दौरान ऊना मंडल के विभिन्न डाकघरों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
4: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 अक्टूबर से ये नवरात्र शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों की रंग बिरंगी रोशनियों व फूलों से सजाया गया है। कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वाला जी, श्री बज्रेश्वरी देवी व चामुंडा देवी में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
5: तीनों जो हमारे ट्रस्ट हैं, तीनों शक्तिपीठों के, उन सब ने अपनी जो बैठक इस बारे में कर ली है और सुरक्षा संबंधी इंतजाम, सेफ्टी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वहां पर एडिशनल हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको लेकर, वहां का जो हमारा टेक्निकल नेटवर्क है, जो CCTV वगैरह है, उनकी दुरुस्ती, वो सारे पार्ट के ऊपर चर्चा उनकी हुई है और वो तैयारी से अपनी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी कन्वीनियंस भी हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दें और श्रद्धालुओं को उसमें परेशानी आना शुरू हो, तो दोनों का बैलेंस करके वहां पर हम इस पे इंतजाम में ध्यान रखेंगे।
1: उधर ऊना जिला के चिंतपूर्णी, बिलासपुर के श्री नैना देवी जी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों के लिए सुविधा व सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। शक्तिपीठों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिरों व इसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न सेक्टरों में बांटा

0: गया है। इसके अलावा मंदिर व इसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इधर शिमला जिले में भी नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: नवरात्रि के मौकों पर राजधानी शिमला के देवी मंदिरों में 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होगी। शहर के तारा देवी, कालीबाड़ी, बीसीएस और ढींगूदार देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे से खुल जाएंगे। मां दुर्गा के आगमन पर देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों को रंग रोगन कर चमकाया गया है। तारा देवी के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। वहीं बीसीएस स्थित देवी मंदिर में भंडारों के लिए टेंट लगने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों की सजावट की जाएगी। कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना होगी। मान्यता है कि 9 दिन मां दुर्गा की पूजा और उपवास करने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के बीच हल्के बादलों के साथ हुई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। कुल्लू के सैंज व चंबा के चुराह उपमंडल में ओलावृष्टि से मटर व मक्की की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखा है, हिमाचल को उसके बजट से ज्यादा पैसा दे रहा केंद्र। अमर उजाला की सुर्खी है, शिमला से मटौर तक बनेगा पूरा 4 लेन, बिलासपुर हमीरपुर भी जुड़ेंगे। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भानुपल्ली बेरी रेल लाइन को सुक्खू सरकार ने 4,818 करोड़ में से 847 करोड़ ही दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का किया आह्वान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि कल से शुरू। राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां।

कार्यक्रम गीतों का कारवां सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की मिलीजुली आवाज में गाए इस गीत के साथ। प्रीतम का संगीत निर्देशन और बोल हैं गुलजार के।

लाइफ इन अ मेट्रो लीजिए। इस फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है, आवाज सोहम और साथियों की। सैयद कादरी के बोलों को सुरों में ढाला है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

कार्यक्रम है गीतों का कारवां और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रहा कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म जब भी मेट से। खूबसूरत से इस गीत को गाया है शान और उस्ताद सुल्तान खान ने, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का।

शाहिद माल्या और साथियों को भी आपने सुना इस गीत में। सोहिल सेन का संगीत निर्देशन और बोल थे इरशाद कामिल के, और ये गीत हमने लिया था फिल्म गुंडे से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां, और ये रही कार्यक्रम की अगली पेशकश।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों का कारवां अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

पूनम सपना और लक्ष्मी के गाए ये लोकगीत, विवाह लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए सुनिए मान सिंह और साथियों की आवाज में।

इसी लोकगीत के साथ आज का ये कार्यक्रम पहाड़ों के सुर अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ कल से शुरू हुआ। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता महाकुंभ के दूसरे दिन आज समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से शामिल होंगे। आयोजन के पहले दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने समग्र शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का विकास केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में ज्ञान के साथ संस्कार, संवेदना, नैतिक कर्तव्य बोध, भारतीय संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश भी आवश्यक है। इस महाकुंभ के प्रथम दिन का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत, विकसित भारत रहा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: एनआईटी हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ 6.0 के प्रथम दिवस का केंद्रीय विषय आध्यात्मिक भारत विकसित भारत रहा। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन का प्रथम दिवस का उद्घाटन पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक भारत विकसित भारत विषय पर आयोजित विषय से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटारिया जी ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा सदियों से उसकी पहचान और शक्ति का आधार रही है। भारतीय जीवन दृष्टि में आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता, प्रकृति, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ी हुई है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धुलारा में कल माता मनसा देवी संपर्क सड़क व मनहुता में सियुण खड्ड संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 1,66,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पठानिया ने इस अवसर पर डुंगरेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 अक्टूबर से ये नवरात्र शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों व फूलों से सजाया गया है। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वाला जी, श्री ब्रजेश्वरी देवी व चावंडा देवी सहित अन्य मंदिरों में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: तीनों जो हमारे ट्रस्ट हैं, तीनों शक्ति पीठों के, उन सब ने अपनी जो बैठक इस बारे में कर ली है और सुरक्षा संबंधी इंतजाम, सेफ्टी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वहां पर एडिशनल हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको लेकर, वहां का जो हमारा टेक्निकल नेटवर्क है, जो सीसीटीवी वगैरह है, उनकी दुरुस्ती, वो सारे पार्ट के ऊपर चर्चा उनकी हुई है और वो तैयारी से अपनी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी कन्वीनियंस भी हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दें और श्रद्धालुओं को उसमें परेशानी आना शुरू हो, तो दोनों का बैलेंस करके वहां पर हम इस पे इंतजाम में ध्यान रखेंगे।
0: उधर ऊना जिला के चिंतपूर्णी, बिलासपुर के श्री नैना देवी जी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों के लिए सुविधा व सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिरों व इसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा मंदिर व इसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी रखी

0: जाएगी। इधर शिमला जिले के तारा देवी, कालीबाड़ी सहित अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज राष्ट्रीय डाक दिवस है, जिसका प्रमुख उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस का विस्तार है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ऊना जिला में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य पर भारतीय डाक विभाग द्वारा ऊना जिला में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अधीक्षक डाकघर ऊना मंडल बलबीर चंद ने बताया कि 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है और बदलते समय के साथ भारतीय डाक विभाग ने अपनी पारंपरिक सेवाओं के अलावा स्पीड पोस्ट, पार्सल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय डाक, डाक जीवन बीमा, बचत बैंक, आधार व पासपोर्ट सेवाएं तथा डिजिटल भुगतान जैसी कई आधुनिक सेवाएं शुरू की हैं। डाक सप्ताह के दौरान ऊना मंडल के विभिन्न डाकघरों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोकगीत और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है अमर सिंह भरमौरिया ने।

अमर सिंह भरमौरिया। जी हाँ, इनका गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए सुनिए, वसंत लाल ठाकुर की आवाज में।

वसंतलाल ठाकुर की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिमाचली लोकगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत जिसे गाया है आशा कंवर और साथियों ने।

इसी लोकगीत के साथ हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म कर्मा से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला, जिसके अंतर्गत देशभक्ति गीत आपको सुनवाए जाते हैं। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दीवार से। इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ और साथियों ने।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम और मनमोहन वारिस के युगल स्वरों में ये गीत था। एआर रहमान का संगीत था और बोल थे समीर के। कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत लीजिए, सुनिए सरफरोश फिल्म से। इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने।

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और साथियों ने, और ये है कार्यक्रम की अंतिम

माला ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी सैनिक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं खेल फिल्म के गीत के साथ। गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने और गायिका हैं लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की मिली जुली आवाजों में अभी श्रोता सुन रहे थे खेल फिल्म का गीत। संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजें हैं।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन है।

अरे है ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मिस्टर नटवरलाल इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

सैनिक भाइयों, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, नितिन मुकेश साधना सरगम की मिली जुली आवाजों में। फिल्म है खून भरी मांग।

0: आशिक मुझे बनाया। हंसते
1: हंसते सैनिक भाइयों, इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

जी हाँ, जहाँ बातें होती हैं दिल की, किस्से होते हैं जिंदगी के। यही तो वो कार्यक्रम है सखियों, जिसमें साझा होते हैं वो छोटे बड़े, वो खट्टे मीठे एहसास जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी को बना जाते हैं और भी खास। बातें कभी हंसने मुस्कुराने की, तो कभी रिश्तों को निभाने की, कभी अपने सपनों को जी लेने की, तो कभी माँ की सीख जिंदगी में उतार लेने की। तो आज भी सखियों आ पहुंचे हैं हम लेकर आपका वही जाना पहचाना सा कार्यक्रम सुनो सखी, सिर्फ और सिर्फ 103.4 MHz पर धर्मशाला के संग। जी हाँ, और सुरों की मिठास, मीठे शब्दों की रवानी हर दिल तक पहुंचे, इसी की जुबानी। तो चलिए सखियो, हम भी शुरुआत करते हैं प्यारी सी बातों की, प्यारी सी हम ये कह सकते हैं अपनी सखियों के साथ साझा करते हैं आज की प्यारी प्यारी बातें। सखियों, कहते हैं हमारी एक छोटी सी मुस्कान हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना सकती है। आप ज़रा सोचिए कि हमारी हर दिन की मुस्कुराहट हमारे जीवन को कितना खूबसूरत बना देगी। सच में सखियों, हमारी मुस्कान एक ऐसी दौलत है हमारी, जिसे बांटने से वो कभी भी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। और देखा जाए सखियों, तो जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में उम्मीद हो, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तो आज से सभी चिंताओं को किनारे रखिए, दिल खोलकर मुस्कुराइए, और याद रखिए सखियों, ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। अब आप सब सोच रही होंगी कि आज के इस कार्यक्रम में भला हंसने मुस्कुराने की बातें क्यों हो रही हैं। तो आपको बता दें सखियों, आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जी हाँ, जिस तरह हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे मन को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है हंसना मुस्कुराना। देखिए सखियों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, पल में खुश और पल में दुखी, लेकिन गहरी बात यह है कि हम अपनी भावनाओं को कितना समझते हैं, किस तरह से उन्हें बैलेंस करते हैं, किस तरह से उन्हें नियंत्रित करते हैं, और हाँ, तनाव और मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, अपना मन, जी हाँ, किस तरह से हम मजबूत बनाते हैं, क्या चीज़ें हमें विचलित कर जाती हैं और क्यों विचलित कर जाती हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी पर। अक्सर सखियों, आज की तेज़ रफ्तार भरी जिंदगी हमें चिंता, तनाव और भावनात्मक दबाव इस सब में घेर ही लेती है, और ऐसे में हम कभी कभी अपने आप को निराश, हताश और कभी कभी टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के गिरने की। तो कभी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग करना बंद कर दें और अपने मूड को बदल लें, गाने सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, और हाँ, दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमारी ज़िंदगी का, एक ऐसा रिश्ता सखियों जो हमारा हर एक दायरा ख़त्म कर देती है। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी सहेली से बात करें, और एक अच्छा मित्र हमें एक सही सलाह देता है, साथ ही हमारी हिम्मत जो है वो जोड़ता है, और टूटे हुए विश्वास को भी एक दोस्त ही हमारे अंदर फिर से जगाता है। तो जब भी कोई परेशानी हो, बात कीजिए अपने सबसे अच्छे मित्र से, और हाँ, हम तो आपके साथ हैं ही सखियों, इसीलिए कभी अपनी बातों के साथ तो कभी प्यारे प्यारे गीतों के साथ जाहिर कर देते हैं हम वो अपनापन जो महसूस करते हैं हम आप सभी सखियों के लिए, और तभी तो आप सब सखियां बनती हैं हमारे लिए हमेशा खास। तो चलिए, बातों के सिलसिले को थोड़ा सा विराम देते हैं और एक सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम।

0: पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: बीत गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सीमा। बातें हो रही हैं सखियों मानसिक स्वास्थ्य जी का, जी हाँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात है सखियों की। सबसे पहले तो अपने लिए समय निकालें, घर के काम ज़रूरी हैं लेकिन खुद को, जो हमारा स्वास्थ्य है उसे हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और हाँ, पर्याप्त नींद भी लीजिए। और हाँ सखियों, कभी भी अपनी तुलना दूसरों के से ना करें बल्कि अपनी प्रगति, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। आप जो हैं, जहाँ हैं, बेस्ट हैं, इस बात की मन में गांठ बांध लीजिए सखियों, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियाँ और जीवन अलग होता है। हो सकता है जो चुनौतियाँ आप सहन कर रही हों, जिन चुनौतियों का सामना आप कर रही हों, कोई उनके सामने टिक भी ना पाता, तो खुद को प्रेरित महसूस करवाते रहें और इससे भी हमारा मन मजबूत होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक और बात सखियों, हर समस्या का समाधान हमें तुरंत मिल जाए ये भी कभी कभी संभव नहीं होता। हाँ, हर समस्या का हल ज़रूर होता है पर कभी कभी समस्या कोई थोड़ा ज़्यादा समय ले लेती है। जीवन की कोई गुत्थी ज़रा देर से भी सुलझती है, तो सारा खेल समय का है सखियों। जब आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है अपना बेस्ट देने के बावजूद भी, तो उसे फिर छोड़ दें भगवान पर और समय पर। यकीनन सखियों, देरी से ही सही लेकिन उस बात का हल आपको ज़रूर मिलेगा और फिर आप सोचेंगी कि अरे मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी, समस्या तो हल हो गई। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को समय के सहारे भी छोड़ देना चाहिए। और हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए अपने शरीर को भी बिल्कुल स्वस्थ रखिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए सखियों। और हाँ, अपने मन की आवाज़ सुनिए, अपनी भावनाओं को समझिए, अपनों से जुड़िए, परेशान है तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि अपने मन की बात करना हमारी कमज़ोरी नहीं होता बल्कि अपने मन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी होता है। और हाँ, अगर थक जाएं कभी कभी तो आराम भी कर लें भाई, आपकी ज़िंदगी है, यूं ही काम ही करती रहेंगी तो फिर जिएंगी कब। इसलिए जब भी थोड़ा थक जाएं, आराम करें, खुद को समय दें और सबसे बड़ी बात, हमेशा शिकायतों से नहीं बल्कि मुस्कुराहटों से अपने हर दिन की शुरुआत करें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सुबह उठें और एक तरोताज़ा दिन की शुरुआत करें। और अब हम भी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे सखियों, और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस की। जी हाँ, चिट्ठियों का वो दौर सखियों कितना प्यारा था, जब चिट्ठियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी बल्कि उन्हें महसूस किया जाता था। तो चलिए अब हम भी कार्यक्रम में खोलते हैं यादों का वो पुराना लिफाफा और बात करते हैं भारतीय डाक की, उस खूबसूरत दुनिया की जिसने सालों से देश के कोने कोने को आपस में जोड़े रखा है। आपको याद होगा सखियों, वो दौर जब एक छोटा बड़ा संदेश, जो भी संदेश होता था वो चिट्ठियों के माध्यम से ही हम तक पहुंचता था। और हाँ, जब भी कोई डाकिया चिट्ठी लेकर आता था तो दिल खुश हो जाता था। किसी चिट्ठी में अपनों की यादें हमें मिलती थी तो कभी कोई एक छोटा सा पोस्टकार्ड दूर बैठे किसी अपने को हमारे करीब ले आता था। स्याही से लिखे वो शब्द, लिफाफे में बंद भावनाएं और डाकियों के हाथों घर पहुँचती खुशियाँ, सब अलग ही एहसास होता था। वो डाक सिर्फ संदेश पहुंचाने का माध्यम नहीं है सखियों, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कड़ी भी है। इसी विषय पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी सखियो, चिट्ठियों के दौर में तो यकीनन आप पहुंच ही चुके होंगे, और सच में वो दौर कुछ अलग था। कभी किसी फौजी जवान के बूढ़े माता पिता को मिलता था उनके बेटे का प्यार उस चिट्ठी के रूप में, तो कभी किसी पत्नी के इंतजार और उसके आने की उम्मीद लेकर आती थी ये चिट्ठी। जी हाँ, सबका हालचाल, परिवार की बातें, त्योहारों की शुभकामनाएं और बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि गांव मोहल्ले की बातें भी होती थी उस बंद लिफाफे में। और हाँ, डाकिया तो इतना खास होता था सबके लिए कि मानो उससे विशेष व्यक्ति तो गांव में कोई हो ही ना। बुजुर्गों की वृद्धावस्था, पेंशन के साथ साथ किसी बहन के भाई के लिए प्यार को ये चिट्ठी द्वारा ही जो है वो पहुंचाया जाता था। और हम आज चाहे जितना मर्जी आधुनिक हो जाएं, लेकिन डाक के महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। डाक सेवा ने कल भी देश के कोने कोने को जोड़ा था और आज भी। तो यूं ही डाक के साथ जुड़े रहें, और कभी मन करे तो किसी को चिट्ठी लिख लें सखियो, यकीनन आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रों की। जी हाँ, जो कि कल से शुरू हो रहे हैं। ऋतु परिवर्तन की बेला के साथ सखियों, वातावरण में भक्ति आस्था का रंग अब घुलने लगा है। चारों ओर अलग ही एक भक्तिमय भाव है, और कल से शुरुआत हो जाएगी शारदीय नवरात्रों की। और बात करें माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की, तो इनकी भक्ति और आराधना की जाती है, और हमारी सखियों की तैयारियां तो आज से ही शुरू हो गई होंगी, या बहुत सारी सखियों ने सामान खरीद भी लिया होगा, और बस मंदिर की साफ सफाई हो रही है, सजावट हो रही है, और कल की तैयारियां भी हो रही हैं कि क्या कुछ करना है, किस क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब आज हो रहा है। और शारदीय नवरात्रों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था इन्हीं दिनों, और साथ ही साथ नवरात्र की पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन में हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना है, क्योंकि सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। तो सखियों, बातें और भी होंगी, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम बात करेंगे खान पान की, और बनाएंगे साबूदाने की टिक्की, क्योंकि अब व्रत उपवास हम रखेंगे नवरात्रों में, तो साबूदाने के ही पकवान बनेंगे, और उसकी हम खिचड़ी बना लेंगे, कभी खीर बना लेंगे, कभी बीच में फलाहार में वो काम आएगा, साथ ही साथ आलू भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम कल के लिए आपको बनाना सिखाएंगे साबूदाने की टिक्की। लेकिन उससे पहले एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं सखियों, और आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि खान पान का पड़ाव अभी बाकी है।

जी सखियो, तो किस तरह से बनती है साबुदाने की टिक्की? गीत से पहले हमने आपसे किया था वादा कि आपको बताएंगे। इसके लिए साबुदाना आपको चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक व्रत वाला। साथ ही जीरा आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं। साबुदाने को पहले से अच्छे से भिगो लेना है, रात भर रखते हैं उसे भिगोने के लिए, और उसके बाद उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इसमें मैश किए हुए आलू, कटी हुई मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया नमक सब डाल दें। व्रत वाला नमक ही आपने डालना है। और सखियो, बस आप अच्छी अच्छी हाथ से जो है वो गोल गोल टिक्कियाँ बना लें और तवे पर सेक लें देसी घी के साथ, और सुनहरा कुरकुरा होने तक इन्हें सेकें, और उसके बाद दही या हरी चटनी के साथ इन्हें आप सर्व करें।

तो सखियों इसी गीत के साथ अब लेते हैं आपसे अनुमति, अगले किसी कार्यक्रम में कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जाने से पहले बता दें आपको, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। इसी के साथ अब अपनी रेडियो सखी सीमा को दीजिए अनुमति। प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन का 1 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।

0: संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call for protest at Jantar Mantar by the CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. Namo Bharat trains

आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

आसमां को बढ़कर राही तो रुक ना सकेगा, दुनिया के रास्तों पे चलकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर पहुंचेगा।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि

मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूँ और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आज़ादी देनी चाहिए, जो सही आज़ादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आज़ाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन ज़रूर होता है लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है, फिर भी मन को मजबूत बनाकर ज़रूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है, अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार ज़रूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों जाना चाहेंगे वहाँ। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूँगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश हैं और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाँव में रहा। खेत खलिहानों में मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछा कर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं। अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्र भूमि, झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियाँ, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

यह आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6th class में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया। उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज़ पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊँ मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहाँ सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाज़ें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की हैं भाई। बहुत ही मज़ा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे, बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली ना मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूँ। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूँ, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है। परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना।

आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही हैं, फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा, किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना, बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की

क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं, तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है, तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइनें हैं उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है, क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है, पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया, और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूँ। वैसे मुझे पक्षी पसंद हैं और मैं रोज़ उन्हें दाना भी डालता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में, आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है, जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियाँ और चिड़ियाएँ आती हैं, उनकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देख कर और उनकी आवाज़ सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को, अच्छा, चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं, न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज़ में मम्मी मम्मी बोलता है, तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है। अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। यही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की

भारत बहुत ही सुंदर है। इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी ज़मीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आँखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल की यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारह मास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की

शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिये के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की ज़रूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतज़ार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतज़ार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएँ नहीं।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने

0: बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
5: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैला

0: हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
5: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
4: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया और 4th स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। 2:31 और 28 सेकंड हुए हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था कैफी, कैफे भोपाली का लिखा गाना, संगीतकार गुलाम मोहम्मद और फिल्म थी पाकीज़ा।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है

0: मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में।
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के

0: निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर आ रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रस्तावित प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों से बिना अनुमति के दिल्ली में घुसने की सीजेपी समर्थकों की कथित कोशिशों को देखते हुए तत्काल एहतियाती कार्रवाई पर बल दिया है। मंत्रालय ने कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एहतियाती कदम जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेलीमानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि मान जागृति सामुदायिक जागरूकता फैला रही है, शीघ्र स्वास्थ्य लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगों के निदान के लिए काम कर रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। इस बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी निर्णय ले सकती है। पूर्व राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका को

0: महत्वपूर्ण बताया है। सोलन जिला के वाकना घाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी से संभव होगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और जन समस्याओं के समाधान में भी योगदान देने का आह्वान किया। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी देवी व चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: तीनों जो हमारे ट्रस्ट हैं, तीनों शक्तिपीठों के, उन सब ने अपनी जो बैठक इस बारे में कर ली है और सुरक्षा संबंधी इंतजाम, सेफ्टी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वहां पर एडिशनल हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको लेकर, वहां का जो हमारा टेक्निकल नेटवर्क है, जो सीसीटीवी वगैरह है, उनकी दुरुस्ती, वो सारे पार्ट के ऊपर चर्चा उनकी हुई है और वो तैयारी से अपनी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी कन्वीनियंस भी हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दें और श्रद्धालुओं को उसमें परेशानी आना शुरू हो, तो दोनों का बैलेंस करके वहां पर हम इस पे इंतजाम में ध्यान रखेंगे।
0: अन्य जिलों में भी नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। आज राष्ट्रीय डाक दिवस है। इसका मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, जो 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस का विस्तार है। इस कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत में एडिटिव विनिर्माण, आधुनिक डिजिटल विनिर्माण के साथ भारत के भविष्य का निर्माण। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM के माध्यम से डिजिटल क्रांति में भारत एक प्रतिस्पर्धी भागीदारी के रूप में उभर रहा है। ये एक 3D प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें विनिर्माण की प्रक्रिया को एक डिजिटल फाइल नियंत्रित करती है। ये एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी और नवाचार है जो डिजिटल डिजाइनों को वास्तविक भौतिक वस्तुओं में बदल रहा है। राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रणनीति NSAM भारत में AM पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई एक रणनीति है। इसने अब तक लगातार प्रगति की है, जिसके तहत 1,54,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 56 AM स्टार्टअप को सहायता प्रदान की गई है। AM को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की आधारशिला के रूप में स्थापित करते हुए रणनीति अब अपने NSAM 2.0 चरण में आगे बढ़ रही है, जिसमें NSAM 1.0 की तुलना में और भी बड़े बाजार की योजना है। AM अब सिर्फ लैब और प्रोटोटाइप तक ही सीमित नहीं है। इसे पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था के जरूरी सेक्टर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अपनाया जा रहा है, जिसे जमीन पर सरकारी और प्राइवेट प्लेयर्स के प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट मिल रहा है। AM को एक स्ट्रेटेजिक नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर पहचानते हुए भारत सरकार एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल इकोसिस्टम बना रही है। ये कोशिश नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। इसे बढ़ते नेशनल प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशन और इनिशिएटिव से सपोर्ट मिल रहा है जो इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की राष्ट्रीय रणनीति NSAM जारी की है। भारत में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए

0: मार्गदर्शक नीतिगत ढांचे के रूप में कार्य करती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप ये रणनीति स्पष्ट और समयबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों को केंद्र, राज्यों, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग के माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य वैश्विक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करना और भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ना है। इसका लक्ष्य सामग्री, मशीन, प्रक्रियाओं और सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए भारत विशिष्ट 50 एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियों का विकास करना भी है। रणनीति का उद्देश्य 100 नए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देना और 500 नए उत्पाद विकसित करना भी है। इसका लक्ष्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कार्यबल के लिए 1,00,000 कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 7 विशेषीकृत विकास और परिनियोजन केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र अनुसंधान और विकास, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी तक व्यवहारिक पहुंच के लिए सहायता प्रदान करते हैं। भारत सरकार अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से स्कूल स्तर पर 3D प्रिंटिंग कौशल को बढ़ावा दे रही है। प्रत्येक लैब को 1,200 से 1,500 वर्ग फुट के समर्पित नवाचार कार्यस्थल स्थापित करने के लिए 20,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित खुद करके सीखने वाली किट उपलब्ध होती है। इससे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर पर ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का व्यवहारिक अनुभव मिलता है और कक्षा से ही भारत के भविष्य के AM कार्यबल के निर्माण में मदद मिलती है। NSAM 2.0 की अवधारणा भारत में AM बाजार में तेजी लाने की आकांक्षा को समर्थन देने के लिए तैयार की जा रही है। अगले चरण में बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन में तेजी लाने, डिजिटल एकीकरण के माध्यम से AM नेटवर्क का विस्तार करने और व्यवसायीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियां विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य क्लस्टरों के माध्यम से मशीनों और सामग्रियों को अधिक किफायती बनाना और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। NSAM 2.0 एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप के आधार पर विस्तार करने और भारतीय रक्षा क्षेत्र को व्यापक सहायता प्रदान करने और सतत विकास लक्ष्य आधारित पायलट कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। इनमें मानकों, संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी साझेदारियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामायिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे भारत में एडिटिव विनिर्माण, आधुनिक डिजिटल विनिर्माण के साथ भारत के भविष्य का निर्माण। वाचन स्वर था राकेश शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके मित्रगण, बीड शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रितेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी,

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज़ में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
4: बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है, और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है, क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है, और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना ना ना ना ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
5: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
4: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर

0: कमरे की तरफ बढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकाल कर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री H.P. शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गईं। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज़ है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
1: नहीं।
2: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
1: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी। बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
1: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
1: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे मिली।
2: हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
1: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।

0: हाय क्या हो गया लाजवंती बहन?
1: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
0: हाय कौन था बहन?
1: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
0: दिल्ली में था कि बाहर?
2: नहीं बहन ये बात नहीं, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
0: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
1: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
0: बहन फिर हुआ क्या?
2: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो किस्मत।
1: भाई साहब की नौकरी?
2: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताओ, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
1: अनर्थ?
2: अनर्थ आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
0: हाय राम।
1: सबर करो बहन, धीरज रखो।
3: लाजवंती हौसला रखो।
2: तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
0: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
2: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
0: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
2: ठीक तो कहती हो बहन।
1: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
2: हूँ। नहीं बहन नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
1: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
0: हाँ हाँ हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
1: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
3: लाजवंती क्या सोच रही हो? लाजवंती
2: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछे तो।
3: न जाने कौन है।
2: किस कंबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
3: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
2: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
3: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप?
3: कृष्ण तुम
5: इस वक्त यहाँ?
3: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं, बात क्या है?
2: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है कुछ बताइए तो।
3: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
3: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
3: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक
5: हैं। ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
3: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
3: रजा रजा।
5: अब हाँ हाँ वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए इनकलाब इनकलाब।
6: बदतमीज।

0: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
1: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
0: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
1: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
0: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
1: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
0: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
2: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
1: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
0: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
2: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
1: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
0: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
2: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
0: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
1: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
2: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
0: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
1: कल से स्ट्राइक?
0: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
3: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
0: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
3: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
4: मामी मामी। पिताजी आप पाप रहे?
0: कौन?
4: मैं कोई नहीं।
0: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
4: उषा? हाँ, नहीं।
0: तो कौन घुसा है अभी घर में?
4: उषा।
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
4: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
2: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
0: बुलाओ उसे।
2: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
0: ओह भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
2: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
0: हौसला रखो लालवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
5: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
5: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे

0: और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: मेरा
0: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
0: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
0: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
0: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
0: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागलखाने में जा रहे हैं।
1: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
0: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
0: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
0: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहां हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या तू यहां हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
0: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूं?
0: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
0: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां पर बात करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
2: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
0: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
2: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
3: हाँ, कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी ये चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है?
6: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
6: चलो।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती है।
6: चलो चलो चलो चलो,
8: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
7: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
9: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
8: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
10: कितने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
10: और पैसे?
9: ये ले, मैं देता हूँ।
6: अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े
9: बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
7: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
9: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
7: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
9: मगर

0: क्या कर सकता है?
1: बड़े बाबूजी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
2: सही बात,
1: सही है,
3: सही बात, बिल्कुल।
0: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
2: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
0: हाँ सो तो है,
4: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
3: बिल्कुल
2: सही बात,
3: बिल्कुल सही बात,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज ही मिल लीजिए।
0: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत। अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचिए उसके पास। क्यों भाई?
3: बिल्कुल ठीक बात है।
0: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
5: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
6: मे आई कम इन सर?
7: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
0: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
7: हाँ हाँ बोलो।
0: सर वो बात ये थी कि
8: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब,
9: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब के लिए।
10: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो हाँ। आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
7: हाँ याद है।
10: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो हाँ। गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
7: याद है बरोबर।
10: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
7: बरोबर।
10: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
7: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
10: आपको सब कुछ याद है?
7: Of course.
10: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
7: बोलो बोलो क्या काम है?
10: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
7: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
10: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
7: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
10: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
7: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
10: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर मैं
7: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
10: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
10: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
7: क्यों?
10: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ।
7: अच्छा।
10: जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो हाँ। शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
7: ओ आई सी।
10: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
7: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
10: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
7: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
10: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड।
7: अच्छा, कभी देखा नहीं।
10: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
7: ओ आई सी।
10: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
7: कहाँ?
10: वो घर के आंगन में सर।
7: लोधी रोड के क्वार्टर में?
10: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
7: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
10: यस सर।
7: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
10: ओ आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
7: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
10: सर है तो दिल्ली ना।
7: यस यू आर राइट।
10: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
7: हम रुकवा सकते हैं?
10: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
7: ओके हम रुकवा देंगे।
10: थैंक यू सर।
7: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी?

0: माय ड्यूटी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
0: ओके,
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए। हाँ। ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
0: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
0: ओके, हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा बट लिसन।
1: यस सर।
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है। हाँ। शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं। भाई स्टाफ स्ट्रेंथ वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो, नालगड़ी मेंशन कर दें।
1: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर।
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर।
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीज़न से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहाँ रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहाँ से आई थिंक वो सीड हो गई थी और वो फिर मैंने

0: कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था,
1: अच्छा
0: हाँ वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी,
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
1: हाँ,
0: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ, और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा,
0: हाँ तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप,
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि यार छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहाँ से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया, और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है Raid 1, Raid 2, आमिर, नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के, और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे

0: एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि चार पांच एडी सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें से हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है
1: जी। सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीशन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
0: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
1: हाँ,
0: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
1: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
0: जी,
1: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है करके, बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि,
0: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार। हाँ, जैसा कह रहे थे, ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत

0: तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी। आई थिंक
0: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।
2: जलते

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम।
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो, लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है, बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं।

0: दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी।
0: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो ये 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाता है वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है

0: तो उनके उस
1: हाँ
0: तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज़्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर।
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
1: हाँ,
0: वो,
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडिया में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे तो
1: हाँ,
0: फिर
1: जान
0: वो
1: जाते
0: आप
1: हो कि
0: सारी
1: अरे
0: चीजें देख।
1: यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी,
0: हाँ
1: इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये
1: हाँ
0: व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और उस तरह
1: हाँ
0: से आपको एक
1: हाँ
0: अंदाजा।
1: वो होता ही है। मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
0: जी
1: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते
1: हाँ,
0: हैं,
1: जब
0: मिले।
1: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
0: जी
1: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे। यहाँ बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे, आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है, जेन्युइन लोग भी है, बट फ्रॉड्स भी बहुत है। वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है, कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
0: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो
1: हाँ
0: वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे,
0: हाँ
1: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज, तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
0: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
1: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए,

0: और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: तो ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलके प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग

0: असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाए, सबको भेजे, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो
1: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
0: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
1: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
0: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो 1-2 बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
0: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो
0: जी
1: एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को

0: रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे,
1: मतलब तो, अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही
0: हाँ,
1: अपनी
0: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा, बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है, इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए,
1: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते
0: रील्स, ह्यूमर, कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता, जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई 2-3 ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है क्यों, एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए, रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम

0: काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी,
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते, बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
0: वो नहीं,
1: वैसा नहीं
0: हम
1: किया?
0: आई थिंक वही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैपेबिलिटी, अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए अच्छी तरह से
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है
1: जी,
0: मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई हैं कंपैरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी, फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना
1: आए
0: दो
1: और
0: बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
0: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: हूँ। बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है, अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए छोड़?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी,
1: अच्छा,
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था, फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की, मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपके।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं। आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और

0: ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे
3: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियात जांच की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
5: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
4: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि हाल के उपचुनाव में पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने के इच्छुक लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति की वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। रूस द्वारा यूक्रेन के जाउपीरिजिया क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हमला अमेरिका से रूस से डीजल खरीदने के समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से रूस को युद्ध के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि लेख में ऑपरेशन की प्रकृति और क्रियान्वयन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इकाई ने मीडिया संगठनों को सलाह दी है कि वे सत्यापित जानकारी का उपयोग करें। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993

बैच के अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजना से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने पीएम राहत योजना का उल्लेख किया। इसके अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वाले लोगों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार भी मिलता है। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ डाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क।
2: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। तो आपको पता है, जानकारी है कि आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं अपने जीनियस से। आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको उत्तर देना होता है, और बात करने के लिए आपको करना होता है फ़ोन। तो हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391।

0: हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विपिन कुमार बोल रहा हूँ।
0: विपिन कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जिला मंडी, जिला मंडी से।
0: अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप युवा हैं क्या?
1: हाँ जी, युवा हैं
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: मैं ड्राइविंग करता हूँ।
0: ड्राइविंग करते हैं, ठीक। क्या चलाते हैं?
1: हाँ जी, गाड़ी चलाते हैं।
0: कौन सा व्हीकल चलाते हैं, मतलब?
1: ट्रक चलाते हैं।
0: अच्छा, ट्रक चलाते हैं, ठीक। अच्छा, तो आपको पता है आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम अपने युवा साथियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं
1: जी।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मैं यहाँ संधोल, जिला मंडी का।
0: मंडी से, संधोल से, ठीक ठीक और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
1: मैं मैट्रिकुलेशन किया जी।
0: अच्छा, ठीक। अच्छा, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आसान सा, कि योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस मनाते हैं ना हम हर साल?
1: हाँ जी, 21 जून को।
0: जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सही। और आप करते हैं उस दिन योग, करते हैं योग दिवस वाले दिन?
1: हाँ जी, करते हैं
0: जी। चलिए, शुक्रिया फोन करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, वैसे आजकल प्रदूषण के बारे में कहना चाहते हैं जी थोड़ा। आजकल थोड़ा इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी, इसका बड़ा मसला है जी।
0: मुश्किल हो रही है ना?
1: हाँ जी, जैसे इलेक्ट्रिक बस चल रही है ना, जिससे बस ये करना चाहते हैं।
0: देखिए, पॉल्यूशन तो किसी भी तरह का अच्छा नहीं है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए हमें। और इसके लिए आप कुछ करते हैं? पेड़ लगाते हैं क्या?
1: हाँ जी, पेड़ लगाते हैं और गाड़ियां भी छोड़ रखी है, इसलिए मैंने सोचा प्रदूषण सही चलाएंगे।
0: अच्छा ठीक, चलिए अच्छी बात है। अपने आस पड़ोस में भी जो बच्चे हों उनको भी आपने जागरूक करना है ना? ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत फोन करने के लिए। तो युवा साथियों, आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको करना होगा फ़ोन, और फ़ोन करने के लिए आपको हम नंबर बता देते हैं। फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। चलिए देखते हैं कौन से जीनियस हमसे मिलने आए हैं अब। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएंगे?
2: तानिया बोल रही हूँ, जम्मू से मैडम जी।
0: तानिया?
2: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तानिया जी, क्या करती हैं आप?
2: मैडम जी बस प्लस टू की है, अभी घर का काम करते हैं।
0: प्लस टू कर ली है आपने?

0: और आगे क्या करना चाहती हैं आप?
1: आगे बस उसे कर लेंगे, करनी
0: आगे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई अब छोड़ देनी है?
1: है बस। थोड़ा सा घर में कोई बात हो गई थी ना, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। बस
0: अच्छा
1: अगले मार्च को ना फिर मैं पढ़ जाऊंगी स्कूल में। हाँ
0: अच्छा अच्छा हाँ, ज़रूर पढ़ाई ज़रूर करनी है ना।
1: हाँ करूंगी मैडम जी।
0: अच्छा चलिए, आपसे पूछते हैं कि आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को किस बात के लिए प्रेरित किया था? स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है ना? चलिए, इनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, तो इंतज़ार करते हैं जब तक कि कोई और कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ संदेश सुनाते हैं आपको और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक गीत।
2: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
3: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
3: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
2: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
0: हेलो
4: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं
4: जी? मुन्ना चाट भंडार जी, ठाकुर द्वारे।
0: ठाकुर द्वारा से?
4: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: हाँ जी, धन्यवाद जी।
0: अच्छा, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि NCC का पूरा नाम क्या है?
4: क्या जी?
0: NCC।
4: अरे पता नहीं जी, हम तो बिजी थे, बर्गर बना रहे थे।
0: अच्छा, बर्गर बना रहे हैं आप?
4: रस पड़ा था, मैंने अचानक फोन लगा दिया, लग गया और अभी उठाया था जैसे कॉल
0: जी। अच्छा, जैसे बच्चे आजकल स्कूलों में NCC रखते हैं ना, जिसमें उनको ट्रेन किया जाता है डिफेंस में जाने के लिए भी, उनको जैसे NCC के बच्चे हर जगह होते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो NCC के बच्चे वहाँ होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अच्छा, आपने भी शायद, आप जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम में आपके साथ के भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने NCC लिया था। चलिए, आपको नहीं पता, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए सुनाते हैं कुछ संदेश और फिर उसके बाद गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: तो स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। हम बात कर रहे थे NCC के बारे में। तो युवा साथियों, आपको बता दें कि NCC यानी नेशनल कैडेट कोर, ये भारत का एक युवा संगठन है जो विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, एकता, देश सेवा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता जो है उसको विकसित करना, देश के प्रति प्रेम और नागरिक जिम्मेदारियों की भावना बढ़ाना, विद्यार्थियों में एकता, सहयोग और भाईचारे को प्रोत्साहित करना ही इसके मुख्य उद्देश्य हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से

0: जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यु टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: तो युवा साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और आपको बता दें कि कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल यानी रविवार को 11 अक्टूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और शक्ति भक्ति और आस्था के प्रतीक ये माने जाते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन 19 अक्टूबर को होगा और दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं भारत जो है त्योहारों का देश है और अब तो त्योहारों के दिन शुरू हो चुके हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मान्यता ये है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा से सुख शांति शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। और क्योंकि दिवाली भी आने वाली होती है तो घर और मंदिरों में साफ सफाई करके पूजा तो की ही जाती है। शुभ मुहूर्त और स्थानीय पंचांग के अनुसार कलश की भी स्थापना करते हैं कुछ लोग। लेकिन हम अपने युवा साथियों से ये कहना चाहते हैं कि माँ दुर्गा के 9 पावन दिन हम सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आएं। तो इस पावन अवसर पर हम आपसी भाईचारे, नारी सम्मान, स्वच्छता, सामाजिक सेवा और सकारात्मक सोच को अपनाने का संकल्प लें और माँ दुर्गा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और कल से सब जो शुरू हो रही हैं शारदीय नवरात्रि, सबके परिवार में सबके घर में खुशियां लेकर आए। तो चलिए चलते चलते सुनते हैं एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, आपको बता दें कि सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनते हैं शाम 6:05 पर। मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम हिम दर्शन आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही रात्रि 9:15 पर रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9 कार्यक्रम संस्कृति भारती, रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:00 को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों व समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस बीच करुणामूलक संघ की प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि सरकार करुणामूलक परिवारों के हितों के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ऊर्जा, समर्पण और सक्रियता के साथ जनता के बीच कार्य करने को कहा है। कुल्लू में आज संगठनात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव, पंचायत, मंडल और बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा। राजीव बिंदल ने प्रत्येक मंडल में हर महीने में कम से कम एक प्रभावी जन प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं, जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: तीनों जो हमारे ट्रस्ट हैं, तीनों शक्तिपीठों के, उन सब ने अपनी जो बैठक इस बारे में कर ली है और सुरक्षा संबंधी इंतजाम, सेफ्टी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, वहां पर एडिशनल हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना है उसको लेकर, वहां का जो हमारा टेक्निकल नेटवर्क है, जो सीसीटीवी वगैरह है, उनकी दुरुस्ती, वो सारे पार्ट के ऊपर चर्चा उनकी हुई है और वो तैयारी से अपनी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी कन्वीनियंस भी हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दें और श्रद्धालुओं को उसमें परेशानी आना शुरू हो, तो दोनों का बैलेंस करके वहां पर हम इस पे इंतजाम में ध्यान रखेंगे।
1: अन्य जिलों में भी नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रदेश विद्युत बोर्ड के पेंशनरों ने सरकार पर उन्हें विभाजित करने के आरोप लगाए हैं। नाहन में एक बैठक के बाद विद्युत बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने में देरी कर रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से त्योहारी सीजन से पहले सभी वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की है।
3: पूरी स्टेट के अंदर एजिटेशन चल रहे हैं और इस तरीके से जो है ना, हम लोग इस जो है दीर्घायु में आकर कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भी जैसे इन्होंने हमारे को पिक एंड चूज कर दिया है, 80 वालों को दे दो, 75 को दे दो, फिर उसके बाद जो है 70 वालों को दे दो, इस तरीके से जो किया उसमें क्या है कि भी हम लोगों को जो जितने भी आपस में हम पेंशनर हैं उनमें भी थोड़ा सा मन में वो रहता है कि भी इनको तो मिल गया, हमें नहीं मिला। 20% दो, 40 दो, 30 दो, जो भी देना, तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि सभी को दो पैसे मिलते रहें।
1: भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर आज शिमला में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस सांसद व जेएनयू से जुड़े एक प्रोफेसर के विरुद्ध 11 महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने और उनकी कथित बर्खास्तगी के मामले को लेकर किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि किसी भी महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और निष्पक्ष जाँच के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना और राजनीतिक प्रभाव के कारण कार्रवाई में देरी करना उचित नहीं है। लाहौल स्पीति जिला में 2 दिवसीय ग्रे गो घोस्ट एमटीबी चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का 4th संस्करण शुरू हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने आज इस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई।

0: बरबोग, कारदंग और लापचंग गांव के आसपास स्थित ड्रिल बुरी ट्रैक पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के करीब 35 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्यवर्ती मैदानों क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरमई सांझ और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है घर घर की कहानी।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म है राजकुमार।

0: की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार दे भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोका वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI दी सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार दी सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा दी पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार दी सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लता मंगेशकर की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम की रात फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में, फिल्म है सीमा।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुतो, आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

मौजा ग्राइंदियां कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागबान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। तो किसान भाई बहनों, आज हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम में सांसद आदर्श ग्राम योजना पर, जिसका उद्देश्य है गांवों का समग्र विकास करना और गांव के विकास के आदर्श उदाहरण के रूप में उनको तैयार करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत सांसद किसी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुनते हैं। इसमें गांव के विकास के लिए ग्रामीणों की भागीदारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय पर जोर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य केवल सड़क और भवन बनाना नहीं होता, बल्कि गांव में बेहतर सुविधाएं, अच्छी आजीविका, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी होता है। तो अगर हम बात करें कि इस योजना में खेती का क्या महत्व है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसान गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब किसान खुशहाल होगा तभी गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए गांव के विकास में खेती और उससे जुड़े कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस विषय पर और भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हम आपको सुनवाते हैं लोकगीत।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ बुल्ला बुली, अपने परिवार की फिक्र तो सपना जो होंदी है, पर भविष्य की सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हां जी, इसा वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं, जिन्हां की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार दे भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अटाका प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
6: तो किसान बागवान भाई बहनों, हम बात कर रहे हैं आज सांसद आदर्श ग्राम योजना पर, कार्यक्रम मौजा कराइंदिया में। तो हम बात कर रहे थे कि गांव के विकास में खेती और उससे जुड़े जो कार्य हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि मिट्टी की सेहत के अनुसार खाद और उर्वरकों का सही उपयोग करना, यानी मिट्टी की जांच करना, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाबों का सुधार और सिंचाई के पानी का उचित प्रबंधन करना, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, फसल की कटाई के बाद उचित भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना, खेती के साथ कृषि आधारित छोटे उद्योगों और अन्य आजीविका के अवसरों को

प्रोत्साहित करना। इन सभी गतिविधियों को गांव की जरूरतों, स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के अनुसार अपनाया जाता है। किसान भाई बहनों, गांव का विकास केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि हम सभी की भागीदारी से संभव है। आप ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें और अपने गांव की जरूरतों को सामने रखें। जैसा कि यदि गांव में सिंचाई की समस्या है, पानी की कमी है, कृषि मार्ग खराब है या फिर किसानों की खेती संबंधी जानकारी की जरूरत है, तो इन समस्याओं को ग्राम सभा के सामने आप रख सकते हैं। ग्राम पंचायत से जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके गांव का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हुआ या नहीं। यदि गांव चयनित है तो उसकी ग्राम विकास योजना में कृषि और किसानों की जरूरतों को शामिल कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। और ये भी ध्यान रखें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अलग से कोई निश्चित आर्थिक सहायता सीधे प्रत्येक किसान को देने का प्रावधान नहीं है। गांव का विकास मुख्य रूप से पहले से चल रही सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से किया जाता है। इसलिए किसान भाई कृषि विभाग, पंचायत और संबंधित सरकारी कार्यालयों से संपर्क करके अपने लिए लागू योजनाओं और उनकी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए अब ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक गीत, लोकगीत।

0: तो किसान व बागवान भाई बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम में। और अब हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता उन्नत किसान से।
1: आज उन्नत किसान महिला अहां दे टियाले पर आयो है ना, होवा कर दे इना कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम मीना देवी है जी। फिर मैं अब्दुल्लापुर गांव से आई हूं
1: जी। मीना जी का खेती बाड़ी कर दे तो? हां
2: हां जी कर दे जी।
1: कितनी की जमीन है तो? हां बाल जी से तो हां खेती कर दे ना।
2: चोट कनाली जमीन है ये दहाल।
1: अच्छा
2: हां जी।
1: तो ये सारी चीज खेती कर दे?
2: हां जी हां। धान कणक वगैरह लगान दे कने हां सब्जी सब्जी लगान दे भी।
1: अच्छा
2: हां जी।
1: तो ये जेडी चोट कनाल जमीन है इस वेले क्या क्या लगाया तो? हां
2: इस वेले जी कणक लगाई है भाई।
1: हां जी।
2: कने सब्जियां लगाईया, पालक, धनिया, मटर लगायो, गोभी, बंद फूल, ब्रोकली है, कट गोभी है,
1: यानी के सारी सब्जियां लगान दे।
2: हां जी हां जी। चुकंदर भी लगाए।
1: अच्छा किन्ने की एरिया च कणक वाई है, कुछ है पता कितने कनाल?
2: हां जी यहां लगाई होनी 25-30 कनाल की कणक यहां दी लगाई है।
1: अच्छा
2: हां जी।
1: तो मीना जी ये जेडी तुहां खेती बाड़ी करदे हन, ये जितने भी तुहां दे सब्जियां दे या फसलां दे बीज होंदे ने, ये कुत्थों ते लैंदे तुहां?
2: हां ब्लॉक ते लैंदे वे, जेडे दे फसलां दे जेडे मतलब कणक वगैरा धान वगैरा ना ब्लॉक ते लैंदे वे।
1: अच्छा कौन ब्लॉक पौंदा कांगड़ा?
2: हां जी।
1: तो जियां देखा चोट कनाल एरिया च जियां खेती करनी है तो इस वेले काफी इसे मेहनत मशक्कत करनी पौंदी है, कणका दी फसल कदे हैगी इस वेले?
2: हां जी खरी है इस वेले, ठीक है।
1: तो जियां इस ते सोगी तुहां दस्या कि सब्जियां भी तुहां काफी लगांदे हन, तो ए इना सब्जियां दा फिरी बेचदे को तू बेचदे भी नहीं या अपने दाइयां?
2: हां जी हां रिलायंस च भी दिंदे ना हां जेड़ा मंडी मतलब की।
1: अच्छा
2: हां जी बखे तिथु भी दिंदे, कने जे ज्यादा ही हो जान ता हां सब्जी मंडी लेके जांदे
1: कांगड़ा।
2: हां जी कांगड़ा।
1: अच्छा
2: हां जी।
1: तो मीना जी इस ते बाद गल करदे हां, जियां ए जेड़ी खाद होंदी है जे तुहां अपनी कोई सब्जी या फसल लगांदे हन, कौन दे खाद पांदे, मैल कौन दे पांदे तुहां, देसी या ज्यादा अंग्रेजी?
2: अंग्रेजी ने यहाँ देसी पांदे मतलब।
1: अच्छा देसी मैले ने तैयार की गई सब्जी कने अंग्रेजी मैले ने तैयार की गई सब्जी तो क्या फर्क लगता?
2: फर्क ही लगता कि उसकी ग्रोथ घट होंगी कने उसकी ज्यादा होंगी।
1: चलो तुहां ये उत्पाद अपने बेचते हैं ना, देखा देसी तरीके कने जलो तैयार करना कने जिते थोड़े भा जेडे थोड़े ज्यादा होंगे हैं, तो तुहां जो उतने भा मिली जाते?
2: नहीं जी हां जो बराबर ही भा मिलता है, जेड़ा देसी
1: अंग्रेजी। अच्छा जी तुहां दस्या कि रिलायंस एक मंडी है कने एक कांगड़ा सब्जी मंडी, दोनों वहां सेम ही भा बराबर भा?
2: नहीं जी।
1: हाँ जी
2: ओ रिलायंस वाले ने थोड़ा मतलब ऊपर ही होंदा मतलब ज्यादा होंदा ना रेट।
1: हाँ जी।
2: और ओ काट होंदा।
1: अच्छा तो मंडी पे आगा जानते कि कल जानते सब्जी लेके हर रोज या दुम्मे त्रिंगे दिन है?
2: जालू भी तैयार हो जाती रोज भी दिंदे जी रिलायंस वाले। हाँ जी मतलब की 15-20-25-30 किलो लेंदे ना वे रोज ही दिया तो। हाँ
1: अच्छा
2: कने मंडी है जी ज्यादा ही हो जाती क्वांटल के हिसाब से जी ज्यादा ही 70-60 किलो तो हाँ जो मंडी लेना पौंदा वे जी ज्यादा ही हो तो भी मंडी लेना पौंदा।
1: तो मीना जी तुहां दा जेड़ा इलाका अब्दुल्लापुर ना इथो सिंचाई दा क्या साधन है, पानी कियां लगांदे तो?
2: कुल्ला दा लगांदे।
1: अच्छा कुल्ला है, पक्कियां ने कुल्ला बणियां?
2: हाँ जी पक्कियां कुल्ला बणियां।
1: ए कुदू ते आउंदी कुल्ले?
2: ए सोड़े उपर ए चैतड़ुए ते।

0: बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
0: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। यह हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान की कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि PM राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को ₹25,000 तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण शिमला से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 सांय तक प्रसारित किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाता है। जय जी, कैसे हैं?
7: मैं ठीक हूँ राजेंद्र जी, आप सुनाओ कैसे हैं?
6: जय जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे, इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे। क्योंकि जय जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित लेकर आते हैं।
7: जी
6: देखिए, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सेब की तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोक गीतों से,
7: और किसान भाई साथ ही सुनाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत का प्रसारण, मौन पालन एक सफल व्यवसाय।
6: जी तो देखिए, बात करते हैं काम की बातों के तहत सेब की तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बारे में। तो देखिए जय जी, सेब की तुड़ाई का समय निर्धारित करना बागवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि तुड़ाई के समय फल कच्चे रह जाएं तो ऐसे फल विपणन और भंडारण के दौरान ठीक तरह से नहीं पकते हैं। तुड़ाई के समय का अनुमान लगाने के लिए इस तरह से हर क्षेत्र का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जलवायु भिन्न होने की वजह से दिनों की संख्या भी भिन्न होती है और सेब की परिपक्वता का अनुमान भी इससे लगाया जा सकता है।
7: जी, अगर किसान भाइयों परिपक्वता के लक्षण की अगर बात करें तो किसान भाइयों सेब के बीज का रंग देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तैयार है या नहीं। कच्चे फल का रंग सफेद होता है जो पकने पर भूरा हो जाता है। कुछ एक प्रजातियों में कई बार बीजों का रंग तुड़ाई से पहले ही भूरा हो जाता है, जिसकी वजह से इस लक्षण पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यदि लाल सेब के ऊपर पूरा रंग आ गया हो तो उससे भी मालूम हो सकता है कि ये तैयार है या नहीं। रेड डिलीशियस की अलग अलग दो प्रजातियों में विभिन्न प्रकार का रंग आता है, इसलिए रंग के ऊपर निर्भर करने से तुड़ान का समय भी गलत हो सकता है। इस तरह से किस्म की जो नई प्रजातियां हैं उनमें सेब तैयार होने से पहले लाल रंग आ जाता है। किसान भाइयों, तुड़ाई के

0: ठीक समय को जानने के लिए ये भी देखना चाहिए कि क्या फल आसानी से अपने बीमों से टूट रहे हैं या नहीं। यदि हल्का सा उठाने मात्र से आसानी से टूट जाता है तो इसका मतलब है कि वो तैयार है, लेकिन अगर वो कठिनाई से टूटता है तो फल को तैयार होने में अभी और समय लगेगा।
1: जी हाँ जय जी, कच्चा फल अधिक सख्त भी होता है। जैसे फल तैयार होता रहता है वो नरम होता रहता है, इसलिए फल की शक्ति को देखकर भी तुड़ाई का समय निर्धारित किया जा सकता है। सेब में घुलने वाला ठोस सोल्यूबल सॉलिड भाग माप करके तुड़ाई के समय का अनुमान लगाया जाता है। इसे मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फल की तुड़ाई से पहले तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि में काम आने वाली सामग्री का हमें प्रबंधन कर लेना चाहिए। जैसे तुड़ाई का सामान कील्टे या फिर प्लास्टिक की पेटियां हैं, टोकरियां हैं, तुड़ाई के थैले हैं, ग्रेडिंग के लिए टोकरियां या बक्से, पैकिंग के लिए पेटियां, कील, कागज, स्टेंसिल, स्याही, ब्रश, पेटी बांधने की तार, तार लगाने की मशीन, गत्ते के डिब्बे, कार्टन, ट्रे, टेप नाप तौल करने की मशीन, मुहर लगाने की इंक पैड या स्याही।
0: जी किसान भाइयों, आमतौर पर तुड़ाई के लिए डंडी वाली छोटी टोकरी या तुड़ाई के थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये भर जाती है तो इन्हें किल्टे या बड़ी टोकरी में खाली किया जाता है। किल्टा भरने पर उसे गोदाम में खाली किया जाता है। तुड़ाई और इसके बाद फलों का बहुत ही आराम से रख रखाव किया जाना चाहिए ताकि उन पर कोई चोट या खरोंच ना आए। किसान भाइयों, तुड़ाई के लिए क्रेट की अगर बात करें तो तुड़ाई के लिए क्रेटों के उपयोग से बागवान कुछ समय भी बचा सकते हैं, साथ ही फलों को क्षतिग्रस्त होने से भी बचा सकते हैं। क्रेटों को बागीचों से लाकर उसका सीधे ग्रेडिंग की जा सकती है। ग्रेडिंग की अगर बात करें किसान भाइयों, तो अधिकतर इलाकों में फलों की ग्रेडिंग आकार के आधार पर की जाती है। तो किसान भाइयों, गुणवत्ता की ग्रेडिंग में विभिन्न इलाकों में काफी फर्क है।
1: जी हाँ, बढ़िया किस्म के सेबों को अलग ही पैक करना चाहिए। पहली श्रेणी के रॉयल डिलीशियस और रिच रेड फलों में कम से कम 76% भाग में और रेड डिलीशियस में कम से कम 55% भाग में रंग होना चाहिए। फलों पर कोई खरोंच, चोट के निशान नहीं होने चाहिए। दूसरी श्रेणी के फलों में रॉयल और रिच रेड का रंग कम से कम 50% भाग में और रेड डिलीशियस में रंग कम से कम 40% भाग में होना चाहिए। इस श्रेणी में छोटे छोटे 2 मिलीमीटर से कम निशान वाले सेबों को डाला जा सकता है। जिन फलों का रंग कम हो और जिन पर निशान 6 से यानी 12 से 13 मिलीमीटर हो, उन्हें तीसरी श्रेणी में डाला जा सकता है। इससे बड़े निशान वाले फल बोरियों में भरकर मंडियों में विपणन के लिए भेजे जा सकते हैं। अगर जय जी बात करें फलों की पैकिंग के बारे में, तो सेबों की पैकिंग के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी के स्टैंडर्ड बक्से का प्रयोग होता है, जिसे शिमला पैकिंग कहते हैं। जी हाँ, और इनकी लंबाई चौड़ाई 12x11, 45x30 और 18x12 सेंटीमीटर होती है और ऊंचाई 30, 28 और 25 सेंटीमीटर होती है।
0: जी
1: 30 सेंटीमीटर के बक्से में लार्ज, 28 सेंटीमीटर के बक्से में मीडियम और 25 सेंटीमीटर के बक्से में स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल आकार के सेब भरे जाते हैं। लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेबों को 4 इसकी तहें होती हैं, जबकि एक्स्ट्रा लार्ज में सुपर लार्ज की 3 और एक्स्ट्रा स्मॉल की 5 तह लगती है।
0: जी
1: बात करें बोरियों में पैकिंग की, कम गुणवत्ता वाले सेब या विधायन फैक्ट्रियों में भेजे जाने वाले सेब की पैकिंग बोरियों में की जानी चाहिए, क्योंकि पेटियों में पैकिंग से अधिक खर्चा होता है। कम गुणवत्ता वाले सेबों के लिए गांवों और छोटे शहरों में काफी उपभोक्ता भी मिल जाते हैं। देखिए जय जी, ये तो बात हुई सेब की तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बारे में। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये सहगान।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोक गीत, आइए सुनते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत। मौन पालन एक सफल व्यवसाय, बातचीत में भाग ले रहे हैं सूरज चौहान और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप।
1: किसान और बागवान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों के बारे में आपको समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं, चाहे हम कृषि की बात करें, बागवानी की बात करें, पशुपालन की बात करें, मधुमक्खी पालन की बात करें। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि अच्छी आय प्राप्त करें और सफलता उन्होंने प्राप्त की है, और हम अपने इस कार्यक्रम में जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे जो सफल किसान है उनके अनुभव आप सभी लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक सफल किसान सूरज चौहान जी, जो कि रोहड़ू क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे जो सफल किसान है सूरज चौहान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार सर, और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज चौहान है और मैं रोहड़ू का रहने वाला हूँ
1: जी। सूरज चौहान जी, देखिए आप तो मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं, तो आपके दिमाग में या आपके मन में ये कैसे बात आई कि मुझे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना है?
2: जैसा कि मैं एक फार्मर हूं, तो हमें पता है कि पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हमें अच्छी फसल चाहिए, अच्छा परागण चाहिए, तो उसके लिए मधुमक्खी का होना आवश्यक है। तो मुझे इस बारे में पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज थी और मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 7 दिन की ट्रेनिंग की, उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया और मैंने उसके बाद इस व्यवसाय को चुना और इसमें लगातार काम किया है
1: जी। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता था?
2: ट्रेनिंग में हमें 7 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, उसमें हमें मधुमक्खी को किस तरह से पालन पोषण उसका करना है, कैसे उसको माइग्रेशन करना है, कैसे हनी एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है, जो कि एक बेसिक ट्रेनिंग है और होनी बहुत जरूरी है
1: जी। तो उसके बाद जैसे आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग शुरू करने के बाद फिर आपने कहाँ से किस तरह से अपना व्यवसाय शुरू किया?
2: ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मैंने 20 बॉक्स से अपना काम शुरू किया था और उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे सब्सिडी दी 1,76,000 की, जिसमें मैंने 50 बॉक्स मधुमक्खी के खरीदे और फिर मेरा काम बढ़ता गया और फिर मैंने फिर बी ब्रीडर की ट्रेनिंग की नौणी यूनिवर्सिटी से 2018 में। फिर मैंने मधुमक्खी पालन बढ़ाया और क्वीन रेयरिंग पे काम किया और कई व्यवसाय उसके साथ मैंने मधुमक्खी में ही जोड़े और इस पर भी विभाग ने मुझे 3 लाख रुपये का अनुदान दिया
1: जी। तो क्या आप ये पूरी तरह से आप मधुमक्खी पालन ही करते हैं या फिर इसके साथ अन्य कोई काम भी करते हैं?
2: मैं वैसे तो

0: मिले हैं, जैसे नॉर्डिक यूनिवर्सिटी से भी लास्ट ईयर मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला था, फिर पहले भी बी कीपिंग पे नॉर्डिक यूनिवर्सिटी से 2021 में भी अवार्ड मिला है, और इसके अलावा हनी आइकॉन इंडिया का हनी आइकॉन अवार्ड भी मुझे मिला है, लास्ट ईयर ही मिला है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने किए हैं। 2018 से मैं लगातार मधुमक्खियों पर ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, जैसे जर्मनी की GIZ है, या फिर जायका है, या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट KVK, और नॉर्डिक यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं बहुत सारी ट्रेनिंग फार्मर को देता हूँ।
1: जी, तो क्या इसके अलावा जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, आप जैसे अन्य जो हमारे किसान और बागवान भाई बहन उनको भी प्रशिक्षण आप देते हो, अपने अनुभव उनके साथ साझा करते हैं, किस प्रकार कार्य करना है वो भी आप बताते हो, तो हिमाचल के अलावा जैसे बाहर कहाँ कहाँ पर आपने जो प्रशिक्षण अन्य किसानों को यानी ट्रेनिंग बाहर आपने किसान और बागवान भाई बहनों को दी है?
0: हमारे पास बहुत जगह से जैसे फार्मर्स आते हैं, हरियाणा और राजस्थान और MP तक हम अपनी मधुमक्खियाँ ले जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल फार्मर्स होते हैं, वो चाहे बी कीपर है या कोई सरसों वाले फार्मर है या जिनकी अपनी खेती होती है वो फार्मर है, हम उनको भी नॉलेज देते हैं कि बताते हैं पॉलिनेशन पर किस तरह से काम करना है, या आपको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब स्प्रे वगैरह नहीं करनी है, और इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जब मधुमक्खियाँ हमारी आपके बगीचों में या आपके खेतों में लगी हुई होती हैं, तो हम उन्हें छोटा मोटा प्रशिक्षण जो पॉलिनेशन के रिगार्डिंग रहता है वो हर जगह देने की कोशिश करते हैं।
1: जी, तो जैसे आपने बात की कि कई तरह के किसान और बागवान भाई बहनों को आपने प्रशिक्षण दिया, साथ ही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को देखिए फल राज्य के रूप में जाना जाता है, फल उत्पादन की बात करें तो बहुत अधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में फलों में किया जाता है, तो फल उत्पादन के लिए भी मधुमक्खी पालन एक सहायक व्यवसाय के रूप में बन सकता है या उभर सकता है, किस प्रकार उभर सकता है ये?
0: जी बिल्कुल, अब तो सेब आड़ू नाशपाती ये सब जो भी प्लम वगैरह है, जितना हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा फसल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी, और क्वालिटी भी जो है उसमें आती है जब मधुमक्खी अच्छा परागण करती है, क्योंकि बीज प्रक्रिया उसी समय बनती है जिससे फसल जो है अच्छी होती है और गुणवत्ता वाली होती है। इसके अलावा हम और भी पॉलिनेशन, जैसे कोई और फसलें सरसों वगैरह या कोई और फसलें हैं, उनमें भी पॉलिनेशन के लिए बक्से देते हैं।
1: जी, आप जो है वो मधुमक्खी पालन काफी समय से कर रहे हैं और पूर्णकालिक रूप से आप मधुमक्खी पालन करते हैं, तो आपकी बात सुनकर के हमारे और भी जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो किस प्रकार एक नया किसान है जिसको मधुमक्खी पालन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो किस प्रकार आ सकता है, कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका विशेष ध्यान उनको रखना होता है?
0: इसमें सबसे पहले तो जो नया फार्मर है उसको कम से कम 5 से 7 दिन का जो फर्स्ट जो बेसिक प्रोग्राम रहता है ट्रेनिंग का, वो लेना ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उसको उतने ही बक्से, मैं कहूँगा मेरी ये राय रहेगी कि वे उतना ही बक्से मधुमक्खी के पाले जितना उसका प्रोडक्शन वो खुद से बेच सके। जैसे मान लो अगर हम 10 बॉक्स पालते हैं और हमारे को 50 से 100 किलो शहद मिल जाता है, अगर वो उसकी मार्केटिंग खुद से कर सकता है तो उससे अच्छा व्यवसाय कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे उसके बॉक्सेस बढ़ते रहेंगे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। अगर वो अपनी मार्केट खुद से बनाता है तो उसको मार्केट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उसका एक तो व्यवसाय अच्छा होगा, उसको इनकम अच्छी होगी, और वो फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकता है, और ये बिजनेस है ही, मतलब इस तरह का है कि ये फुल टाइम बिजनेस करने का है मधुमक्खी पालन।
1: जी, तो इसके अलावा जैसे प्रशिक्षण के बाद उन्हें क्या काम, किस तरह के क्या क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चुनाव होता है मधुमक्खियों का होता है, या मधुमक्खियां वो कहाँ से ले सकते हैं?
0: इसके लिए आप हमारे हिमाचल प्रदेश के बी ब्रीडर हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं फर्स्ट बी ब्रीडर हूँ हिमाचल प्रदेश का, और इसके अलावा 14-15 और बी ब्रीडर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं मधुमक्खी लेने के लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मधुमक्खियाँ सेल भी करते हैं, तो आप वहाँ से भी मधुमक्खी ले सकते हैं। पर और इसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये शहद कहाँ कहाँ पर निकलता है, कैसे कैसे एरिया में हमें माइग्रेशन करनी है, जैसे अभी हमें सेब के टाइम पर हम रखते हैं तो उस टाइम में प्लम चेरी और बहुत सारे फूलों से जो नेक्टर आता है उसे शहद बनता है, बहुत कम बनता है, उसके बाद माइग्रेशन हमारी लाहौल स्पीति को होती है, वहाँ पर थाइम में फूल आता है और कई चीज़ों में फूल आता है, फिर इस तरह से हमारे बहुत सारे एरिया है जिसमें सोर्सेज अलग अलग, जैसे छिछड़ी का फूल आने वाला है तो छिछड़ी पर शहद निकलेगा, अलग अलग तरह के शहद निकलते हैं और उसकी वैल्यू भी अलग अलग रहती है, और अच्छा जो है हमें हिमाचल के हनी का प्राइस भी मिल जाता है।
1: जी, तो क्या शहद उत्पादन की बात करें, मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें, तो सिर्फ जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई बहन है वो सिर्फ शहद से ही आय प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अन्य भी उत्पाद है जिनको वो बेच करके अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, इसमें शहद के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले जैसे शहद निकालते हैं, उसके साथ साथ इसमें वैक्स निकलता है, बी वैक्स। तो बी वैक्स एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी मार्केट जो है शहद से भी ज़्यादा ऊंचे दाम पर ये बिकता है। और फिर इसमें पोलन निकलता है।

0: है, मधुमक्खी अपने पैरों में पोलन लाती है अपने बच्चों को फीडिंग करने के लिए, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पोलन होता है वो भी निकाल लेते हैं, और उस पोलन की भी बहुत अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे प्राइस इसके मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मधुमक्खी में हम ले सकते हैं। मैं खुद, मेरी फैमिली में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरी माता जी भी मेरे साथ फीडिंग करते थे, और मेरा छोटा वाला भाई भी मेरे साथ बिजनेस कर रहा है इसमें, बी कीपिंग में, और इसके साथ साथ मेरी वाइफ भी जो है बी वैक्स से कैंडल्स बनाती है। तो मतलब ये पूरी फैमिली के लिए एक बिजनेस कह सकते हैं कि पूरी फैमिली इस बिजनेस को चला सकती है।
1: जी, जब हम कृषि और बागवानी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे मुख्य जो समस्या आती है कि कीट प्रबंधन या रोगों की, तो क्या मधुमक्खी पालन करते समय भी आपको किस तरह की समस्याएं, कौन से रोग मधुमक्खियों को लग जाते हैं, या कौन से कीट है जो मधुमक्खियों को हानि पहुंचाते हैं, और किस प्रकार से आप उनका प्रबंधन करते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल आदमी की तरह मधुमक्खियों में भी बीमारियां आती हैं बहुत सारी, और कई कीड़े हैं जो मधुमक्खियों को परेशान करते हैं, तो वो भी मधुमक्खियों में रहता है। पर इसमें सबसे ज़रूरी है इसका निरीक्षण और प्रबंधन। जैसे आजकल सबसे जो ज़्यादा है वो बीटल का अटैक चला हुआ है, बीटल अटैक कर रहा है मधुमक्खियों पर। एक स्मॉल हाइव बीटल है, बहुत छोटा होता है, और वो मधुमक्खियों के छत्ते में जाकर वहीं पर अंडे देता है और वहीं पर पनपता है, और फिर बड़ा होकर मिट्टी में चला जाता है, और बड़ी जब वो स्टेज हो जाती है फिर के द्वारा से मधुमक्खी को परेशान करता है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है वो हमें मधुमक्खी के छत्ते अपने साफ सुथरे रखने हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण करना है। जैसे हर एक हफ्ते में हम एक बार चेकिंग करेंगे कि इसमें कहीं हमें बीटल परेशान तो नहीं कर रहा, या कुछ जो है उसके लिए हमें स्मॉल हाइव बीटल के ट्रैप भी आते हैं, हम ट्रैप भी लगा सकते हैं, और भी कई माध्यम रहते हैं जिस तरह से हम जो है अपने बॉक्सेस को बचा सकते हैं।
1: जी, तो ये तो आपने बात की कीट प्रबंधन के बारे में, इसके अलावा कौन से रोग हैं जो मधुमक्खियों को लग जाते हैं और किस प्रकार से उनका प्रबंधन आपके द्वारा किया जाता है?
0: इसके अलावा भी बहुत सारे रोग जो है मधुमक्खी को हो जाते हैं, जैसे लार्वा सड़न हो गया, और इसमें नोज़ीमा दस्त वगैरह लग जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। पर इसके इलाज भी हम साथ ही करते हैं, जब इनमें देखते हैं कि इस तरह की बीमारियां आ गई तो इसके लिए हमें इनको अलग अलग तरह से फीडिंग भी करना होता है, और साथ में दवाइयाँ भी जो है वो लगानी होती है, फॉर्मिक एसिड लगाते हैं, सल्फर लगाते हैं, और भी कई तरह से जो है इनका प्रबंधन करना होता है।
1: जी, जैसे आपने बात की कि जो मानव शरीर है या पशु का शरीर है उसको खाने पीने को अच्छी तरह दिया जाए, यानी स्वस्थ आहार उसे दिया जाए, तो उसका शरीर भी अच्छा रहता है। तो जब भी मधुमक्खी पालन जो हमारे किसान भाई जैसे आप कर रहे हैं, तो करते समय उनके खान पान का किस तरह आपको ध्यान रखना है, यानी पूरे वर्ष भर का कौन से समय पर क्या क्या उन्हें देना है?
0: सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अगर अपनी मधुमक्खियों को बीमारियां और कीट से बचाना है तो उसके लिए हमें अपने छत्तों की स्ट्रेंथ अच्छी बनानी होगी। मधुमक्खियां उसमें कम छत्तों में ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होगी उतना रोग भी नहीं आएगा, और ना ही कोई कीट, जैसे वैक्स मॉथ वगैरह हो गया वो भी अटैक करता है, तो वो सब कीटों से जो है अपने आप को बचा लेती है। और रही बात जब हमें लगता है कि बाहर से नेक्टर नहीं है, फीड नहीं है, तो हम उन्हें ऐसी जगह पे स्थानांतरित कर लेते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, जहाँ पर हमें उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा सोर्स में नेचुरल। और उसके अलावा हम उनको फीडिंग भी कर लेते हैं, जब मान लो सर्दी आ जाती है जहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं होता है, तो हम उन्हें जो है शुगर फीड करते हैं, या कुछ और तरह से मीठा उनको चाहिए होता है तो उनको फीड डाल देते हैं।
1: देखिए सूर्य चौहान जी, अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें, जो हमारी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उसके द्वारा कृषि और बागवानी या मधुमक्खी पालन में भी काफी ज्यादा जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, किस तरह का अनुदान सरकार की ओर से, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, किस तरह का अनुदान आपको सरकार की ओर से दिया गया था?
0: तो जैसा कि आपने बताया कि कैसा अनुदान इसमें मिला था, तो 2011 से मैं जब बी कीपिंग शुरू कर रहा हूँ, 2011 से जब मैंने बी कीपिंग शुरू की तो मुझे सबसे पहले 50 बॉक्स के लिए 75,000 रुपये का अनुदान दिया गया, जो कि अब बढ़कर 1,76,000 हो गया है। उसके बाद जब मैं अपना काम कर रहा था तो बढ़ता गया, तो 2018 में मैं हिमाचल प्रदेश का पहला बी ब्रीडर बना, रजिस्टर बी ब्रीडर, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए का अनुदान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया। और उसके बाद मैंने 2020 में अपना हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, 2022 में पहले ही हनी प्रोसेसिंग प्लांट की सब्सिडी भी मुझे ही मिली, और वो 5 लाख रुपये के रूप में मुझे मिली। और इसके बाद अभी मैं हाल ही में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से, नेशनल बी बोर्ड की तरफ से मुझे 75 लाख रुपए का एक और अनुदान मिला है। अब मेरे पास हजारों बक्से मधुमक्खी पालन के लिए है, और मैं उन पर मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। और इस सब्सिडी मिलती थी, जैसे हम हरियाणा या पंजाब से जब हिमाचल को ले जाते हैं, और हिमाचल से जब हरियाणा पंजाब को ले जाते हैं, तब भी इसमें हमें 10,000 रुपये आने जाने के लिए मधुमक्खी पालन में माइग्रेशन के लिए मिलते हैं।
1: तो इसके साथ आप जैसे मधुमक्खी पालन की हम बात कर रहे हैं सूर्य चौहान जी, तो अगर हमारा एक किसान और बागवान भाई बहन है वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं

0: तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान उनको रखना है मधुमक्खी पालन में?
1: मधुमक्खी पालन में सबसे पहले तो उन्हें ध्यान रखना है कि उनकी कॉलोनी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे जहाँ पर वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, क्योंकि आसपास अगर घास फूस होगा तो उसमें कई तरह के, आजकल बीटल का अटैक है, चींटी का अटैक हो जाता है, और भी कई तरह के जो है जो कीट है वो मधुमक्खी को परेशान करते हैं, वैक्स मॉथ है वो भी परेशान करती है। तो हमें खास ख्याल रखना होगा कि मधुमक्खी पालन में कि हम साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखें, हमारी मधुमक्खी की कॉलोनी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनी रहे, 7 से 8 फ्रेम में हमेशा ही रहे। और इसके अलावा हमें नई रानी पर काम करना होगा, जो हमारे बक्सों में रानियां होती है उनका ध्यान रखना है कि वो नई रानियां होनी चाहिए। और साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे मधुमक्खी के बॉक्स में उनके खाने के लिए फीड और पोलन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अगर वो उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो हमें उसे ये सब उपलब्ध करवाना पड़ेगा।
0: तो देखिए सूरज चौहान जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ आपने मधुमक्खी पालन से संबंधित अनुभव आपने साझा किए। ये सब अनुभव साझा करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था मौन पालन एक सफल व्यवसाय। सूरज चौहान से बातचीत कर रहे थे कुलदीप। हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे।
3: तो किसान भाइयों, आइए फिर से मनोरंजन कर लेते हैं पहाड़ी लोकगीत के साथ। तो सुनते हैं रोशनी शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम में कल के आकर्षण की। जय जी, कल के आकर्षण में हम काम की बातों में बात करेंगे, प्याज की पनीरी की तैयारी के बारे में,
1: साथ ही साथ सुनाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीत के साथ।
0: और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी। तो देखिए जय जी, अब कार्यक्रम का समय भी हो चला है, सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: किसानों का कार्यक्रम किसान वाणी अभी आपने सुना। ये
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
0: प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
3: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
2: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
3: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
2: टूटी हो सर्विस तार
3: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
2: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
3: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
2: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
3: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 14,000 से अधिक पद भरने को दी मंजूरी। मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विज्ञान, नवाचार और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने पर दिया बल। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा। शारदीय नवरात्र कल से होंगे शुरू। धार्मिक स्थलों पर प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और लाहौल स्पीति जिला में एमटीबी चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का चौथा संस्करण शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 14,000 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में

0: आज शिमला में हुई बैठक में ये स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ये सभी स्वीकृत पद अगले वर्ष मार्च तक भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में आज रिकॉर्ड करीब 200 एजेंडों पर चर्चा की गई।
1: मीटिंग बहुत लंबी चली है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार है कि इस कैबिनेट मीटिंग में लगभग 200 के करीब एजेंडाज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और उनपे स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। जैसा हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको सरकारी क्षेत्रों में नौकरी देंगे, उस ओर एक आज कैबिनेट में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज की लगभग कोई 14 से 15 हजार पोस्टें जो है आज कैबिनेट में सेंक्शन की गई है।
0: हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार अब तक 32,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है और 18,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की पहली पोषण नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति को विधानसभा में लाकर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने खेल नीति में बदलाव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रत्येक महिला खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और समाज की आवश्यकताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य साकार करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ अभियान के 6वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक के उपभोक्ता बनने की बजाय नई तकनीकों के सृजक और नवाचारकर्ता बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है वो उनकी दूरगामी सोच और देशवासियों के प्रति भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपरा में शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति व राष्ट्र निर्माण का साधन है। सांसद राजीव भारद्वाज और NIT हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर HM सूर्यवंशी समेत अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला में भटियात विधानसभा क्षेत्र की जरई पंचायत में 2 संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही भटियात क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। पठानिया ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुरूप सभी संपर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल सेक्शन पर अब 11 अक्टूबर से 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन दोबारा बहाल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला नैरोगेज ट्रैक को सभी सुरक्षा मानकों पर सुरक्षित और ट्रेन संचालन के लिए अनुकूल पाए जाने के बाद लिया गया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से पठानकोट, कांगड़ा, बैजनाथ, ज्वालामुखी, रूड और जोगिंद्रनगर क्षेत्र के हजारों यात्रियों सहित पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों व समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ऊर्जा, समर्पण और सक्रियता के साथ जनता के बीच कार्य करने को कहा है। कुल्लू में आज संगठनात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव, पंचायत, मंडल और बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा। राजीव बिंदल ने प्रत्येक मंडल में हर महीने में कम से कम एक प्रभावी जन प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
2: दीदी, आजकल FPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य

0: हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य देश की विविधता को संजोते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के अनुसार जब देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे राज्य की संस्कृति और विचारों का सम्मान करेगा तभी वास्तविक रूप से एक सशक्त समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा।
4: आपके पास अगले 25 वर्ष का वो समय है जिसे नए भारत के निर्माण के समय के रूप में याद किया जाएगा। हमारी कितनी पीढ़ियां ने देश के लिए असीम बलिदान दिए, देश के लिए असंख्य सपने देखे। हमें देश की विरासत के वैभव के लिए काम करना है, हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए काम करना है, हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना है, हमें अपनी परंपराओं को समृद्ध करने के लिए काम करना है।
3: शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र के चलते प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। अन्य जिलों में भी नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति जिला में 2 दिवसीय ग्रे घोस्ट MTB चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का 4th संस्करण शुरू हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने आज इस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: लाहौल स्पीति में बरबो कारदंग और लपचन गांव के आसपास स्थित जिलबू रीच ट्रैक पर आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अध्यक्ष सुशील कुमार के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में शुरू हुई ये प्रतियोगिता अब 4th संस्करण में पहुंच गई है। उपायुक्त ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने और लाहौल स्पीति में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
3: शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान प्रगति नगर में आज युवा संसद व नशा मुक्त युवा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा युवा भारत शिमला और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवा सशक्तिकरण व नशा मुक्त भारत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 14,000 से अधिक पद भरने को दी मंजूरी। मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विज्ञान, नवाचार और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने पर दिया बल। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों के लिए सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा। शारदीय नवरात्र कल से होंगे शुरू। धार्मिक स्थलों पर प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध और

0: लाहौल स्पीति जिला में एमटीबी चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का चौथा संस्करण शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, रोजगार समाचार सुनिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद तथा सहायिकाओं के 15 पदों को भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन में प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संबंधित आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17 अक्टूबर 2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। केंद्रों की सूची का विवरण इस तरह से है। आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर ये पद रिक्त हैं कार्यकर्ता के, आंगनवाड़ी केंद्र देवघाट, सनीसाइड, भ्यूत, भैरा, बणी, कमलोग, इन स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद जिन स्थानों पर रिक्त हैं वो है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जराश, टिक्कर, दधोग, जोखड़ी, ढलेन, जमरोट, भरोल, कोरों, कोटला, गौल, थुंदी, गण की सीर, मोलो खुर्द, कलोड पाजो और ऊंचा गांव। आंगनवाड़ी सहायककर्ता और सहायिका के जो पद हैं उनके लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है वो इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए। परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष संख्या 0179222164 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार अभी आपने सुने।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
0: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ओल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
0: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, शाम ढल रही है और शाम के साथ ही दिल के किसी कोने में कुछ पुरानी यादें भी जागने लगती हैं। कहते हैं दिन भर इंसान दुनिया की आवाज़ों में उलझा रहता है, लेकिन शाम होते ही दिल अपनी खामोशी से बातें करने लगता है। कुछ रास्ते घर तक पहुंचते हैं और कुछ रास्ते यादों तक। शाम की खामोशी में एक आवाज उभरती है, कोई भूली हुई याद फिर दिल के करीब आती है। और जब शाम याद और संगीत एक साथ मिल जाएं, तो एहसास को बयां करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए सतिंदर सरताज को।

बड़ा लिब्रदर्स को अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति।

हरिहरन की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। आपको बता दें कि आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता

0: बनाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
2: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपन

0: ऑर्गेनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
3: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
2: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
4: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
2: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे

0: 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: निवेश और सहयोग उपलब्ध करवा रही है। बिलासपुर में उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रदेश में NHAI परियोजनाओं में कुल 55,103 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं।
1: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 55,000 करोड़ रुपए की सड़कें बना, 55,000 करोड़ रुपए हिमाचल के बजट से ज्यादा है। यानी हमें देखने का नजरिया समझना होगा कि हम आपको जो साल का हिमाचल का बजट होता है उतना तो हम आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से।
0: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना में बिलासपुर बैरी खंड में भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले और राज्य सरकार द्वारा लंबित देय हिस्सेदारी उपलब्ध न करवाने से परियोजना में देरी हो रही है।
1: भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे की प्रोजेक्ट्स की बात करें, बिलासपुर बेरी लाइन 62 किलोमीटर और 13,410 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। 75% रेलवे देने वाला है, 25% हिमाचल गवर्नमेंट देने वाली है। लैंड एक्विजिशन जो बिलासपुर से बेरी तक होना है यह पिछले 3 सालों से स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ और इस कारण से बिलासपुर से हम आगे बढ़ने में अक्षम है। उसी तरीके से स्टेट को डिपॉजिट करना है 4,818 करोड़ रुपए, अभी तक स्टेट ने डिपॉजिट किया है 847 करोड़ और बाकी सब खर्च केंद्र सरकार कर रही है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहड़ू और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15,75,00,000 रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों के प्रवास के दौरान भटवाड़ी और काशापाट में स्थानीय लोगों व बच्चों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ये धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम केवल जनसंवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान और मौके पर किए गए वायदों को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम बन गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से शिक्षा, राष्ट्रभक्ति व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन में रहकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी।
2: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 की पहले भी बात हुई है, युवाओं की आवाज पहल के माध्यम से युवाओं को इस राष्ट्र संकल्प को केंद्र बना करके रखा गया है। जो युवा है, युवाओं से जो हमारी अपेक्षा है वही इस देश को आगे ले जाने वाली है। अपने विचार, जो अपनी ऊर्जा है, अपनी जो प्रतिभा है वो अपना नवाचार को विकसित भारत के निर्माण के लिए जोड़ें।
0: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीजन इस बार कम दर्ज किया गया है और अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि MIS के तहत इस साल करीब 13,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई जबकि बीते वर्ष 79,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार MIS के तहत सेब खरीद पर समर्थन मूल्य 1 रुपये बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे हजारों किसान बागवान लाभान्वित होंगे।
3: प्रदेश में सेब सीजन अब जो है लास्ट बोर्ड पर है और इस बार जो MIS के तहत जो सेब SPMC और हिमफेड के माध्यम से लिया गया वो पिछले साल के बरस पर बहुत ही कम रहा। अभी केवल 13,000 मैट्रिक टन ही आज की तारीख तक जो है MIS के तहत हमने प्रोक्योर किया है और पिछली मरतबा जो है 98,000 मैट्रिक टन हुआ था।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से

0: ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं अयोध्या में सरकार द्वारा स्थापित किए गए ऐतिहासिक राम मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत की दृष्टि और भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है।
1: ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये मुकाम आएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष की सेवा पूरी हो रही है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा को देशवासियों के अटूट विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंची। वहां पर एम्स संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संस्थान के मेधावी प्रशिक्षुओं को पदक व उपाधियों से अलंकृत किया। इस मौके पर कुल 92 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना होना चाहिए और डॉक्टरों की संवेदनशीलता व करुणापूर्ण व्यवहार बीमार व्यक्ति को हिम्मत देता है।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिलासपुर के विद्यार्थियों को इस प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन का विशेष अनुभव मिला है। उन्होंने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा और ब्रांड को बनाए रखने और मानवता के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार को केंद्र सरकार प्राथमिकता दे रही है और आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।
3: मैं ये चाहूंगा कि आप हाई डेडिकेशन के साथ, ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिस इज हाउ दिस सोसाइटी इज ट्राइंग टू गिव, सो इट इज ए प्रिविलेज टू यू। और बिलासपुर वालों को तो विशेष करके बधाई देना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिला है। इसका हमको सदुपयोग करते हुए आप जहां भी जाएं एम्स का ब्रांड नेम जरूर बना करके रखें और उसको ध्यान में रखें। यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, मानवता के लिए काम करेंगे।
0: इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी की सीटें और

0: है वो हो चुका है, उसके आगे का प्रोसेस जारी है। आज की परिस्थितियों में 6 फ्लाइट्स आ रही हैं, 6 जा रही हैं। नई फ्लाइट्स कैसे आए उस विषय पे कंपनी के अधिकारी सब लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली में मिलकर इन सभी विषयों पर चर्चा भी करूं और उसका समाधान करने का प्रयत्न भी करवाऊं।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आई इन खिलाड़ियों की मांग पर उन्होंने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।
2: साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन अभी आपने सुना।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: अधिक जानकारी के लिए 7649900015 पर संपर्क करें।
8: निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल।
1: हम आकाशवाणी शिमला से बोल
2: एफएम पेंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम संस्कृति भारती रिले किया जाएगा।
3: और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या

को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है, तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है ऐसा मैं समझता हूँ। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं भी मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स, इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी। देश

0: करके जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे, जिसमें एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर एस्टैब्लिश द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है, हमारी प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है, और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप स्कॉलरशिप जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे, और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं, जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे, और उनको हम जगह भी देंगे, और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग की जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स भारत में कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।

भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

0: कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के न होने में बसती है। आशिमा की कला इसी न होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में। और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगैन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इनटू कंटेम्पररी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक,
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहाँ जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू remember things. And very often you go to a temple, वहाँ पर भी आपको vibrations मिलती हैं। वहाँ पर जैसे hundreds of people have come there और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, wishes मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो you automatically get some सुकून मिलता है। तो matter actually remember करता है कुछ चीज़, और वो हमारे को transmit करता है silently। और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्टवर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है ये मैंने अपने आप बनाया है, ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है। और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफ़ी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है और वो भी नाजुक दिखा रही है। और फिर ये सारी चीज़ें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीज़ें जो फेंकी हुई चीज़ें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए।

चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफ़ी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिजॉल्व किया है। ये डिजॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स।

0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर। एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है, और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
2: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
1: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
2: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
3: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रॉमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाया वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इनडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है, तो दो चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स ट्रिमिंग्स होता है,

0: होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है। मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रति मत सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची।

0: राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खां, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल, ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं, एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ...2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
2: वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
3: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका है और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार है। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। अर्चना को MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
2: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasantalakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival, and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Sri Vinay Varanasi across India, Dubai, and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Awards

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूप आरती, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूप आरती, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition by Muthuswami Dikshitar, Shri Guru Guha, which is set in Raga Udaya Ravichandrika and Rupaka Tala.

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी उतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापूताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ उतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापूताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंग पर बालकृष्ण हसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न कर